0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
3: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
4: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
3: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
4: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए, जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाली रसोई

0: गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। यह प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित गए कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी गवर्नमेंट के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
3: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
5: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST हटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
3: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए एबीवीपी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
7: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है। तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है। एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं। और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
8: We have to continuously be watchful of the
9: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले 2 दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
10: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगो केश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जैमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टेक बॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमरीकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमरीकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
11: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डोसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डोसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितम्बर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट मेक्स आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर सब्सिडाइज्ड रिफिल्स ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स फ्रॉम 1st of next month। राष्ट्रीय संकल्प समारोह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट 1067 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री टुडे एज पार्ट ऑफ 100 वीक्स नशा मुक्त युवा अभियान। इलेक्शन कमीशन टू होल्ड स्पेशल कैंप्स इन ऑल पोलिंग स्टेशंस इन दिल्ली टुडे टू असिस्ट सिटीजंस रिगार्डिंग इंक्लूजन एंड डिलीशन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स। IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386। अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर, और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है इस वक्त, वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
3: थैंक यू सर।

0: अब लोग सोचते हैं ये डीएम न्यूरोलॉजी है क्या
1: जी,
0: तो मैं बताना चाहूंगा कि डीएम न्यूरोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
1: हाँ जी।
0: इसमें हम बर्थ से वन मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 इयर्स।
1: हाँ जी।
0: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
1: Alright.
0: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है?
0: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं
1: जी, जी।
0: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, जी।
0: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा
1: जी, जी, जी।
0: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
1: बट
0: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए, ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ
0: तो हम
1: हाँ
0: प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट।
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2-3 आवरली, इनिशियली 2-3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है,
1: होता
0: वो क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास घुसती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ,
0: उसमें हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है।

0: उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ 4 मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाएं ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाएं।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण मतलब जिसे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है, तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सिवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बोर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है। उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है, या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक नहीं बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमैच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है, या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत,
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है? अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: क्योंकि
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू, सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट, मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको definitely मजा आएगा इस conversation में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत happy feel कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम situation में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे doctors होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो questions आप हमें भेजते हैं basically, और आज हमारे पास आप ही के questions हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में दाई का।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास पा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती हैं, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभालनी करनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड,
0: वेरी बैड।
1: तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज, वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप और उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है,
1: ठीक है। अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल

0: फंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें दो तीन तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन. कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है? अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा. ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है. हाउ कैन अ बेबी भी गंदा? नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस. उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए, तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है. बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32, एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है.
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने.
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है.
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में. ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है.
2: अच्छा.
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद.
5: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें. श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है. मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन. आज ही अपॉइंटमेंट ले. श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल करें 7060022430.

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल लिसनर, वेलकम है आपके मुरादाबाद 89.6 पर संडे की सुबह। खुशी आपके साथ है और 20 सितंबर की तारीख है आज। बहुत ही ब्यूटीफुल डे संडे, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार होता है। फाइनली मुझे भी इंतजार होता है, क्योंकि आप सबसे मुलाकात करने का मौका जो हमें मिल जाता है। एवरीवन, वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:03 और आप सभी का फेवरेट शो शुरू हो चुका है, संडे मॉर्निंग मस्ती। दोस्तों, हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कुछ दिन सिर्फ पीसफुल होना भी जरूरी है। और आज अपने आप से कोई डेडलाइन मत रखिए, बस खुद को थोड़ा सा मी टाइम दीजिए, क्योंकि कभी कभी ना डूइंग नथिंग भी अपने लिए कुछ अच्छा करने जैसा होता है। तो आज का संडे, लेस प्रेशर मोर स्माइल्स एंड लेस ओवर थिंकिंग मोर लिविंग। आप दिल को ना थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, खुद को महसूस कीजिए और इसी खूबसूरत दिन को अपनी ऑन वाइफ के साथ एंजॉय कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल पीसफुल एंड हैप्पी संडे दोस्तों। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और आप भी शो में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी एक्टिविटी एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आप तक पहुंचानी है। और संडे, जब संडे आता है ना तो सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, लेकिन किसी किसी के लिए संडे होता है, ओहो इतने सारे काम पेंडिंग है उनको कंप्लीट करना है, और किसी के लिए बस आज तो भाई मुझे उठाना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और कुछ मतलब सोना तो चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारियां उठा देती हैं। हम आपसे मुलाकात करने के लिए, ढेर सारी मस्ती करने के लिए, फन करने के लिए आपके बीच आ चुके हैं, और आप ही मेरे साथ यहाँ पर आज की सुबह कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वेरी गुड, हॉली हॉली ड्राइविंग कीजिए एंड बाहर बहुत गर्मी है, पानी पीते रहिएगा। और ये अमेजिंग ट्रैक आप सभी के लिए, गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल लिसनर।

गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी हूँ आरजे खुशी। और दोस्तों, आज का दिन अपने आप में बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज बहुत प्यारे प्यारे डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा डे आज सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत अहम है। वैसे हर डे स्पेशल है, लेकिन आज कुछ खास ही है। दोस्तों, आज 20 सितंबर है और आज मनाया जाता है वर्ल्ड क्लीनअप डे, यानी विश्व सफाई दिवस। दोस्तों, सफाई सिर्फ अपने घर के बाहर झाड़ू लगाने तक लिमिट नहीं है। साफ सफाई एक हैबिट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी होना चाहिए। आज का दिन हमें एक बहुत प्यारा रिमाइंड देता है कि हम अपने घर के साथ साथ अपनी गली, अपने मोहल्ले और अपने शहर को भी साफ रखने में अपना योगदान दें। और दोस्तों, बात सिर्फ कचरा कम करने की नहीं है, फूड वेस्ट यानी खाने की बर्बादी को भी रोकना उतना ही जरूरी है। सोचिए, हम कई बार प्लेट में अपनी जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो आज एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, जितना जरूरत हो उतना ही खाना प्लेट में लेंगे, खाने को वेस्ट नहीं करेंगे और कचरा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। क्योंकि दोस्तों, क्लीन सिटी सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सभी की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो आज सिर्फ वर्ल्ड क्लीनअप डे सेलिब्रेट ना करें, बल्कि साफ सफाई को भी अपनी डेली हैबिट बनाएं, क्योंकि साफ सड़कें हमारे शहर की खूबसूरती हैं और साफ आदतें हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी है। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको अपडेट अभी बताने वाली हूँ। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कचरा कम करें, खाना बर्बाद ना करें और अपने शहर को साफ रखने में अपना छोटा सा योगदान जरूर दें। हैप्पी वर्ल्ड क्लीन अप डे। साफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने शहर को भी खूबसूरत रखें। बाकी दोस्तों, आज की सुबह आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं राइट हियर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी से मैसेज पहुंचाएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह आप सभी के लिए एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी संडे एवरीवन।

0: What, Chunka?
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, दुआएं तो हम भी आपके लिए रोज करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले लिसनर्स हैं वो ऑलवेज हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान जी की आवाज में। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:31। हाँ जी, 10:31 हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद की वेदर के बारे में। जी हाँ, मुरादाबाद का मौसम कैसा रहने वाला है आज? दोस्तों, मुरादाबाद में आज मौसम साफ और तेज धूप वाला, अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री से न्यूनतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के आसार बेहद कम है, लेकिन धूप और उमस के चलते दोपहर में रियल फील 38 से 39 डिग्री तक महसूस हो सकता है। इसीलिए धूप में निकलते समय थोड़ा ध्यान जरूर रखें। एंड एवरीवन, मौसमी फ्रूट्स का सेवन कीजिए एंड पानी पीते रहिए और अम्ब्रेला अपने साथ रखिएगा, क्योंकि तेज धूप में मुझे लगता है कि छाते की नीड होती है, तो छाता जरूर लेकर जाएं ताकि आप धूप से बच सकें। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई जागरूकता और सफाई गतिविधियां चल रही हैं। 156 घंटे के विशेष सफाई अभियान के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में जन जागरूकता रैलियां और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्वच्छता दिवस के मौके पर आइए हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, कूड़ा इधर उधर नहीं डालें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से दूरियां बनाएंगे, क्योंकि साफ शहर सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत। तो दोस्तों, इसमें आप भी अपना योगदान दीजिए और बच्चों को भी सिखाइए। एक्चुअली देखिए, बच्चे तो वही करते हैं ना जो बड़े करते हैं, तो बड़ों को सीख कर ही बच्चे एक्टिविटीज करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अच्छी हैबिट अपनाएंगे तो छोटे बच्चे भी अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे। और मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, रोड पर कुछ भी खा रहे हैं तो वो इधर उधर फेंक देते हैं रोड पर ही ऐसे ही। तो प्लीज़, वहाँ पर डस्टबिन रहते ही हैं, तो इधर उधर कचरा ना डालें रोड पर, डस्टबिन में ही कचरा डालें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि जब साफ सफाई आसपास रहेगी तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आप भी आज की सुबह मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड यहाँ पर प्यारे प्यारे मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज आया है एंड आज की सुबह लवली हमें मैसेज पहुँचा दी है। गुड मॉर्निंग लवली, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी ही होंगी। और ये मैसेज अपना पहुँचाती है विकास नगर से। वैसे लवली, आपका नाम बहुत ही प्यारा है और लवली नाम सुनकर ना मुझे एक गाना याद आ रहा है, कनिका कपूर का। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं, मैं आपको सुनवा दी हूँ ना। एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास प्रियांशु का आया है और ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं न्यू मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हैप्पी संडे सेम टू यू। तो चलिए दोस्तों, और भी अपडेट है जो आप तक शेयर करनी है, सोशल मीडिया हो या फिर बॉलीवुड हो, सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। बस आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराते हुए आप सब बहुत अच्छे लगते हो, तो फिर क्यों कंजूसी करनी है? देखिए, मुस्कुराने का ना कोई पैसा खर्च नहीं होता है, तो मुस्कुराया करो, किसने रोका है आपको? हाँ, अभी भी तो देखो कितने प्यारे लग रहे हो आप स्माइल करते हुए। बस ऐसे ही ऑलवेज हैप्पी रहो। और सुनो ये प्यारा सा गाना, मैं अभी लौट कर आती हूँ।

वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर संडे की सुबह खुशी आपके साथ है। शुभ नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर आता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी से जुड़ा एक अहम नियम बदलने जा रहा है। अब सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल को तय रेट पर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी BA पूरा होना जरूरी होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है तो समय रहते इसे पूरा करा लीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है उन्हें दोबारा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। और एक जरूरी बात, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपका गैस कनेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन सब्सिडी वाले रिफिल के लिए निर्धारित कीमत का लाभ लेने के लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। तो दोस्तों 1 अक्टूबर का इंतजार मत कीजिए, अगर आपका ऑथेंटिकेशन बाकी है तो समय रहते आप अपना काम पूरा करवा लीजिएगा, क्योंकि जानकारी भी जरूरी है और सही समय पर किया गया छोटा सा काम आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को कम कर सकता है। मैं आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 दिल से दिल तक। और अभी लेते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आती हूँ। मैं करूंगी आपसे बहुत सारी बातें और बॉलीवुड से एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और कहते हैं ना कि जब घर में बेटी आती है ना तो सिर्फ एक नन्ही सी जान नहीं आती है, अपने साथ ढेर सारी खुशियां, प्यार और मुस्कुराहट लेकर आती है। उनके नन्हे कदमों से पूरा घर जैसे खुशियों से गूंज उठता है और उसकी एक छोटी सी मुस्कान पूरे परिवार का दिल जीत लेती है। बेटियां सच में घर की सबसे खूबसूरत रौनक होती हैं। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि बॉलीवुड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत हैप्पीनेस गुड न्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। 19 सितंबर को उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया है। इस खूबसूरत न्यूज को कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारे से अनाउंसमेंट कार्ड के जरिए शेयर किया है और अब उनकी पहली बेटी दुआ बड़ी बहन बन गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस खूबसूरत फैमिली में हैप्पीनेस का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है।

और रियली दोस्तों, जब घर में बेटियां जन्म लेती है ना, तो घर का मतलब हर एक कोना खिलखिला उठता है। और बहुत भाग्यशाली होती हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। एंड वो पेरेंट्स बहुत लकी होते हैं जिनके घर डॉटर जन्म लेती है। चलो अभी एक और सुनते हैं शानदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं। टाइम आपको बता देती हूँ, 10:59 हो गए हैं। 10:59 और आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है खुशी के साथ, सुनते रहना है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क।

Hey, hi everyone, good morning. Welcome to Cafe Muradabad 89.6 पर RJ खुशी आपके साथ है. और दोस्तों, iPhone 18 की दीवानगी इस तरह से लोगों के सर पे चढ़ी है. मैं बताती हूँ आपको दोस्तों, टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ना एक बड़ी न्यूज, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल शुरू होते ही बेंगलुरु के एप्पल स्टोर पर ग्राहकों की ना लंबी लाइन देखने को मिली. नया फोन लेने का क्रेज ऐसा कि लोग सुबह सुबह ही स्टोर पहुंच गए. लगता है दोस्तों, फोन नया हो तो इंतजार भी मंजूर हो जाता है. हाँ, कहाँ इंसान को एक मिनट का सब्र नहीं होता है. और iPhone 18 लेने के लिए, iPhone 18 Pro लेने के लिए लोग लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं. देख रहे हैं आप, फोन की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है. वो क्या एक गाना है ना, ये इश्क का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, लेकिन ये iPhone का जादू है जो घंटों इंतजार करने पे मजबूर कर देता है और लोगों को मंजूर भी है. और अब बात करते हैं, एक बड़ी खूबसूरत सी अपडेट है लखनऊ से. और दोस्तों देखिए, गणपति जी का अभी फेस्टिवल चल रहा है और गणपति बाबा और नन्हे भक्त की प्यारी सी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है. अब एक मैं आपको बताती हूँ, बेहद और दिल छू लेने वाला मोमेंट. लखनऊ में गणपति विसर्जन से पहले एक नन्हा भक्त गणपति बाबा की प्रतिमा के कान में ना धीरे से अपनी बात कहता नजर आया. बच्चे की मासूमियत और पापा पर उसकी आस्था ने इस पल को बेहद खूबसूरत बना दिया. कहते हैं ना, भगवान तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े शब्द नहीं, बस सच्चे दिल की जरूरत होती है. और हम भी प्यार से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति पप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या. बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं गणेश भगवान जी से कि गणपति पापा आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां दें, आपको बुद्धि दें एंड आपके सारे विघ्नों को हरें. और आप जो भी लाइफ में चाहते हैं, सब आपके ड्रीम्स पूरे हो जाओ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी. लेकिन एक अमेजिंग सा ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ राइट नाउ, आप एंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. अभी आप मैसेज मुझे पहुँचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896.

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPI TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

सच में दोस्तों आपके इतने क्यूट मैसेज आते हैं ना कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा चलिए अब बिना किसी देरी के अपने दोस्तों से बातचीत कर लेते हैं। और आपके यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं। वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 11:22 और मैं आपके साथ आपकी हूँ स्टारजी खुशी। संडे का दिन अपने आप में स्पेशल होता है और मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों हर दिन स्पेशल होता है और आज क्या कुछ स्पेशल है मैं

0: दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारे, हाथ में चाय का कप, बच्चे अपनी मस्ती करते हैं और हम बिल्कुल सुकून से अपनी सीट पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे सफर के दौरान हमारी सुरक्षा के लिए कितने लोग लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं? दोस्तों आज 20 सितंबर है और आज मनाया जा रहा है RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्थापना दिवस। भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और यात्रियों की सुरक्षा में RPF की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक ये जवान अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और खास बात यह है कि जब हम सफर कर रहे होते हैं तब हमारी सुरक्षा के लिए जवान दिन रात 24/7 अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। तो आज RPF स्थापना दिवस पर देश के सभी RPF कर्मियों और उनके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं, दिल से सलाम। आपकी सुरक्षा हमारी रेल यात्रा का भरोसा, RPF के हर जवान को नमन करते हैं हम। 24 हमारी रेल यात्रा का भरोसा, RPF के हर जवान को नमन करते हैं हम। 24 हमारी मदद करने वाले, 24/7 हमारी मदद करने वाले के लिए खूबसूरत संदेश है, जो खुद चैन से नहीं सोते ताकि हम चैन से सफर कर सकें, जो हर व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं, आज उनके लिए बस इतना कहना है, आपकी ड्यूटी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं लाखों यात्रियों के लिए भरोसा है, आपके समर्पण को दिल से सलाम करते हैं हम। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाया है सुरेश कुमार जी ने, एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी ने आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है चौधरी मुमताज आलम जी का और साथ में इनके दोस्त थे राकेश वर्मा जी। आदाब खुशी जी, आपको भी आदाब सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज आज की सुबह हमें पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: बिल्कुल दोस्तों, सलाम नमस्ते। हमारी ओर से भी आप सभी को स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती और वक्त हुआ है अभी 11:42। और दोस्तों देखिए, मौसम बदल रहा है, सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। अब धीरे धीरे मौसम करवट ले रहा है, गर्मी से हम ठंडे मौसम की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमारी छोटी सी लापरवाही से सर्दी, जुखाम, गले में खराश या एलर्जी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और पर्याप्त पानी पीते रहें, खाने में ताज़े फल और हरी सब्जियां शामिल करें। सुबह शाम तापमान कम हो तो हल्के मैं कहूँगी कि बिल्कुल हल्के से जो होते हैं ना गर्म, हाँ वो अगर कपड़े आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं 4 AM 4 बजे सुबह 4 से 5 के बीच, तो अब मौसम बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन हो रहा है और हाथों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर मौसम बदलने पर लगातार बुखार, सांस लेने में परेशानी या ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। एवरीवन, मौसम बदले लेकिन आपकी सेहत का ख्याल रखना आपकी आदत, ये आपकी मतलब आपकी आदत नहीं बदलनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे, ठीक है एवरीवन, क्योंकि जो फिट है वो हिट है और आप हेल्दी रहेंगे तो हर चीज़ का आप लुफ्त उठा पाएंगे। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, गुड मॉर्निंग खुशी दी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, रेहान अली जी का मैसेज हमारे पास आया है गली नंबर 3 से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या बात है संडे की सुबह और साथ में आपका शो, फिर तो दिन की शुरुआत ही खास हो जाती है, अरे वाह क्या बात है, आपकी बातों में जो अपनापन और सादगी है ना वो सुनकर सच में दिल खुश हो जाता है। आज भी आपका अंदाज बहुत प्यारा लग रहा है और शो सुनने में खूब मजा आ रहा है। अगर हो सके तो प्लीज आज मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, ट्रैक की आप प्ले कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। एंड कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया खुशी जी, मोस्ट वेलकम सर। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि खुशी जी आपका संडे भी बहुत अच्छे से गुजरे, चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान हमेशा यूं ही बनी रहे, आपकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहे, खूब खुश रहिए और इसी तरह मुस्कुराती रहिए आप। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैसेज हमें आसिफ जी पहुंचाते हैं फ्रॉम इटली से। तो चलिए विवान, मैं लौट कर आती हूँ कुछ कमर्शियल ब्रेक के बाद एंड एक म्यूजिकल ब्रेक भी लेने वाले हैं, क्योंकि गानों के बिना मुझे लगता है कि शो अधूरा है, तो ट्रैक भी होना बहुत जरूरी है। इसे एंजॉय कीजिएगा, मैं वापस आती हूँ अभी।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक अभी आपने सुना है मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अभी समय हुआ है 11:00।

0: कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय करवाती हूं डॉक्टर एके सिंह से, जो कि चंबल फर्टिलाइजर के वरिष्ठ प्रबंधक है। डॉक्टर एके सिंह जी हमें खेती किसानी कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं उसके विषय से मैं हमारे सभी श्रोताओं को अवगत कराती हूं। वह विषय है बदलते मौसम के अनुसार फसलों का चुनाव। इस संदर्भ में हम आपको आगे जानकारी दें, इससे पहले हम डॉक्टर सिंह से यह जानना चाहेंगे कि भारत सरकार व उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित PMKSK योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रियाएं हैं, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आप ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हरेक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, DAP का कब इस्तेमाल करना है, NPK का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें, लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए, उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम के एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: ये जानकारी हमने डॉक्टर सिंह से सुनी पीएम केएस के योजना के संदर्भ में। डॉक्टर साहब, अब आप आगे यह भी बताएं कि उर्वरक उपयोग के विषय में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है उसका क्या उद्देश्य है?
2: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं, और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी, और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है, देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है ले मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के ऑडियो क्लिप सुनने के बाद अब हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि बदलते मौसम से आपका क्या तात्पर्य है?
2: हाँ, अगर हम देखें तो जैसे आज के समय में कभी आप सूचनाएं सुनती होंगी कि अब के लानिनो आ गया है, उसकी वजह से बारिश कम होगी या बारिश इस तरह से होगी कि कहीं पर ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर कम हो जाएगी, ये इस तरह का है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इसकी वजह से समुद्र की जो सतह होती है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो जो मानसून की आवक है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो लानिनो है इस बार ये मार्च तक रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो मतलब पूरा संसारी कह लें एक तरह से, इसमें ठंड भी बहुत कम पड़ेगी। मतलब जो एक सामान्य ठंड होती थी, विंटर होती थी जिसकी वजह से स्नोफॉल होता था और सारा चक्र हमारा एक सामान्य रूप से जो अब तक चला आ रहा है वो था, वो कहीं ना कहीं इस बार रुकेगा। तो ये मौसम का जो अपना चेंज है, क्योंकि अब तक जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती जो अब तक चला आ रहा था, मौसम एक सेट डर रहा था कि अक्टूबर महीने से जो ठंड होगी टेम्परेचर गिरेगा, इस महीने इतना होगा, इस महीने इतना होगा, अब शायद वैसा ऐसा क्रम इस महीने न रहे, इस साल न रहे, है ना। अच्छा, मानसून का रहता था कि भाई इतनी बारिश है तो आनी आनी है, एक ही समय पे आगे इस समय, तो उसके हिसाब से हम जो है अपनी खेती का सारा काम सेट करते थे। लेकिन अब ये उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये स्थायी है, लेकिन हो तो रहे तो इनका खेती पर कहीं की असर तो पड़ता ही है। अब सपोज मान के चले कि हमने सामान्य सोच के कि भाई सामान्य इस बार रेनफॉल होगा, बारिश अच्छी होगी, हमने धान ही लगा दिया सारे में, अब बारिश नहीं हुई और आपके पास पानी का कोई साधन है नहीं, ट्यूबवेल नहीं है, तो क्या आपका धान हो पाएगा?
1: नहीं
2: हो पाएगा। अब इसी तरह से अगर आपने ऐसे में आपने ये चीज आपको आइडिया होती और आप कोई और का जो चुनाव कर लेते तो वो शायद आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहता। तो इसीलिए मौसम के हिसाब से या जो मतलब परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो हमारे खेती करने का तरीका है उसमें भी हम उसके हिसाब से उसके साथ लय मिलाते हुए हम उसमें परिवर्तन करें।
1: तो डॉक्टर साहब आगे हमारे श्रोताओं को यह भी बताइए कि ये जो बदलते मौसम की मार है उसका वो सामना किस प्रकार से करें?
2: हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें कही, इसका ही अगर हम तोड़ निकालें तो कैसे सामना करें। जैसे मान के चलिए कि कोई एक जो किसान है जिनका कि 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में वो एक जैसी फसल लगाते हैं, एक फसल लगा दी उन्होंने सपोज। अब जैसे रबी का सीजन आ रहा है, उन्होंने गेहूं लगा दिया, अब गेहूं लगाया, गेहूं के लिए ठंड ज्यादा चाहिए, लंबे समय तक होने वाली फसल है, अगर उसके आखिर में पकाव के समय पर ठंड नहीं पड़ी तो क्या होगा, वो फसल का जो उत्पादन उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा और जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। तो अब क्या करें, गेहूं तो उगाएंगे लेकिन गेहूं का रकबा कम कर सकते, गेहूं आधा कर ले, आधे में थोड़े से आधे के आधे में सरसों कर ले, कुछ चना कर ले, कुछ ऐसी फसल कर ले जो कि हरी कट जाती है, जैसे सब्जी के लिए हरी मटर आती है ना, तो हरी मटर आती है, हरी मटर टाइम पे बिक जाती है, उसके लिए पकाने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चुनाव हैं कि उनमें हम, जैसे आपने एक जो कहावत सुनी होगी, एक टोकरी में सारे अंडे रख देना, तो क्या हुआ, टोकरी गिरी सारे अंडे फूट गए। अगर वो अलग अलग टोकरी में होते तो शायद जो अलग टोकरी में था जो नहीं गिरी उसके वो अंडे बच जाते आप। तो वही सीधा साधा फंडा है इसमें कि हम इसमें इसका सामना अगर हमें करना है तो हम जो पहली चीज ये कि जो फसल का चुनाव है वो मौसम की लय को देख के करें, और वो लय देखने का अभी तक तो जो साधन है वो यही है कि जो भारत सरकार का जो तंत्र है जो उसके बारे में कहता है हम उनकी सुने, है ना, क्योंकि और तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम जो जान सके मौसम कैसा रहेगा, लेकिन उन्होंने जो इसके बारे में कहा है, भविष्यवाणी दी है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा चलें, तो इस तरह से सामना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि संसाधन की बात है, तो हम अपने जो खेतों में जो मतलब जो जैव तत्व होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, है ना। उसको बढ़ाने से क्या होता है, एक खेत की ताकत हमेशा अच्छी, वो जो ज्यादा समय तक पानी रोक सकता है। सपोज एक बार पानी दिया तो वो एक महीने तक होल्ड कर सकता है, फसल सूखेगी नहीं। लेकिन अगर उसमें जैविक तत्व कम है तो वो 15 दिन में ही पानी वो सूख सकता है, तो ज्यादा पानी की आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा काम कर सकते हैं कि खेत में पानी के निकास की भी व्यवस्था करें। अगर ज्यादा बारिश कहीं होगी तो उससे आपकी फसल खराब हो सकती है, तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। निकास की व्यवस्था के एक तो तरीके है खेत से बाहर पानी निकाल दो, दूसरा तरीका यह है कि जो हिस्सा आपके खेत का ढाल वाला है उसी हिस्से पे जो खड्डा खोद दे और वहां पानी इकट्ठा करते रहो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना के और खर्चा करें, सोच समझ के करें, बहुत ज्यादा खर्च न करें, जिससे कि अगर कुछ घाटा होता भी है तो हम उसे संभाल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जो हमारे फसल उत्पादक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए फसलों के चक्रवार का क्या महत्व है?
2: हाँ, फसल चक्र आपने पूछा। देखिए, फसल चक्र क्या होता है, लगातार एक जैसी जब हम जो उगाते हैं जो मतलब जो फसलें, तो वो आपकी फसल चक्र में शामिल नहीं होती। जैसे कि अभी रबी का सीजन आ रहा है, तो एक किसान अपने खेतों में रबी में हमेशा गेहूं उगाते हैं, तो अब उनको चाहिए कि गेहूं के अलावा कुछ और फसलें भी लें, जैसे सरसों है, चना है। और कुछ किसान है जैसे कि लगातार एक खेत में सरसों उगाते चले आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि उसमें चना ले लें या गेहूं ले लें। मतलब जो फसल का क्रम है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप हमेशा एक जैसा ही खाना खा रहे हो, थोड़ा चेंज करिए। चेंज कैसे करिए कि भाई आज आप हरी सब्जी ज्यादा खाइए, अनाज खाइए, या आज आप दूध, मतलब दूध ही दूध पे आदमी रहे तो उसका स्टमक थोड़ा अपसेट हो सकता है। एक ही तरह का जो चीज होती है उससे थोड़ा सा बचे। उसका कारण यह है फसल चक्र का कि एक तो क्या होता है, जब आप फसलों का क्रम तोड़ते हैं तो जैसे एक जैसी फसल जहां होती रहती है ना, तो वहां एक जैसा चक्र बन जाता है, वातावरण बन जाता है, वहां एक तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, एक तरह का रोग पैदा हो जाता है। उनको पता होता है कि इस समय पर मेरे लिए ये भोजन आने वाला है, मेरे लिए जो मैं लाइक करता हूँ इस तरह की फसल यहाँ तैयार नहीं है। अगर आपने क्रम तोड़ दिया, वो गेहूं को इंतजार कर रहा और आपने उसमें चना कर दिया, तो फिर वो उसकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, उसको वहां के ऊपर जो फेत है वो वहां से हट जाएगा। जैसे मान के चलो आप हर रोज रोटी डालते हैं घर के आगे, कुछ एक दो दिन शायद कोई खाने वाला नहीं आएगा, न कुत्ता आएगा न गाय आएगी, लेकिन एक बार अगर वो आने लगी और आप 3 दिन फिर और न डालो, तो वो 2-3 दिन आती है, लेकिन उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया ना, फिर वो नहीं आएगी। उसे लग जाएगा पता कि भाई अब यहां कोई रोटी नहीं डालता। तो इसी तरह हर जीव का एक अपना एटीट्यूड होता है, उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है। तो जब हम फसल चक्र अपनाते हैं तो ये क्रम टूटता है। नंबर एक, नंबर दो क्या होता है कि हर एक जो होती है फसल, उसकी जो रूट सिस्टम होता है जो कि मतलब खाना लेती है जो खेत के अंदर से या पानी लेती है, उसकी एक जो मतलब साइज होता है, गहराई होती है, कोई ज्यादा गहरी जाती है, कोई ऊपर रहती है, कोई फैलती ज्यादा है, कोई कम फैलती है। तो वो जितनी ज्यादा कोई अगर जो मतलब फैलने वाली है तो वो आपके मतलब जो आपका खेत की मिट्टी उसमें ज्यादा स्थान से लेगी भोजन, जो ज्यादा नीचे वाली है वो नीचे से लेगी और जो ऊपर रहती है ऊपर से लेगी। तो जब हेर फेर से आप इसको बोएंगे तो हर जगह से समान रूप से भोजन ले पाएंगी फसल। अगर एक ही तरह गई तो वो एक ही जगह से भोजन लेगी तो वहां पर वो पोषण की कमी ज्यादा हो जाएगी, उस जगह पर हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह में है लेकिन वो फसल को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अदल बदल के बोने से, और जब आप अदल बदल के बो रहे हैं तो उसका जो रूट सिस्टम है वो और जगह से लगता है, जो दूसरी जो खाली जगह है वो रिचार्ज हो जाएगी, वहां जैविक क्रियाएं ज्यादा होंगी, भोजन तैयार होगा तो अगली फसल के लिए वो काम आएगा। इसलिए हेर फेर से बोइएगा, ये फसल चक्र है। और आज के समय में ये बहुत थोड़ा जो कम होता जा रहा है, लेकिन हम सभी किसानों को समझना होगा कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये हमें दोबारा फिर शुरू करना चाहिए अगर हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जाना चाहते हैं। टिकाऊ खेती मतलब जो हमेशा उपयुक्त हो, लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकें, है ना। जैसे बोलते हैं कि भाई टिकाऊ हिस्सेदार है ये हमारा, ये कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता, रात को आवाज लगाओ आ जाता है, हमें जरूरत हो या आता है या इसको जरूरत हो तो हम इसके पास जाते हैं। तो एक फेथ जो होता है ना टिकाऊपन, वो थोड़ा बढ़ता है इसे।
1: यानी फसल चक्र अपनाना सही और अच्छा दोनों है।
2: हाँ सही है, अच्छा है और समय की मांग है।
1: तो डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि बहुफसली खेती क्या हमारे किसान भाइयों के लिए ठीक रहेगी?
2: हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें तो अभी हमारी जो वार्ता हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं ईश्वरीय इशारा था। बहुफसली से क्या होता है कि एक जैसी फसलें हम न लें। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमने आम का ही पूरा बाग है हमारा, और आम की फसल में लगातार हम लेते चले आ रहे हैं, सडनली कोई ऐसी आपदा आ गई, इपिडेमिक आ गया, तो सारा बाग का जो हमें उत्पादन मिलना था वो अफेक्ट हुआ, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी थी वो पूरी की पूरी हमारी। लेकिन आम के साथ हमारे कुछ अमरूद के बाग होते, कुछ लीची के बाग होते, कुछ पपीते के बाग होते, तो क्या होता, आम में नुकसान हुआ ना, लेकिन पपीते में शायद कुछ मिल जाएगा, अमरूद में कुछ मिल जाएगा। तो एक जो मतलब आमदनी का वो है ना क्रम, वो एक फसल होने से पूरा टूट सकता है या पूरा फायदा भी बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपको एक बार बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है लेकिन 4 बार आपको नुकसान हो गया, तो कौन सी अच्छी बात है, 4 बार का नुकसान भारी पड़ जाएगा ना। तो इसलिए एक से ज्यादा फसलें लें। जैसे आप पहले गेहूं ही गेहूं उगाते थे, तो आप कोशिश करिए इस बार आपको सरसों भी लेनी है, थोड़ी सी चना भी लेना है, कोई और भी ऐसी फसल लेनी है, जैसे अलसी आपके अगर होती है, अलसी आपने देखा फ्लैक्स सीड है, वो आप ले सकते हैं। अगर इस समय पर कोई और ऐसी फसल आपको लग रही है जो कि आपके लिए लाभदायक है, या नई कोई चीज आई है जो किसी और किसान ने की है, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुफसली मतलब ये एक से ज्यादा ठिकाने या एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स आप एक ही जगह पे क्रिएट कर रहे हैं, किसी एक फसल के ऊपर या एक सोर्स के ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे। जैसे मान के चलो, ये तो फसल की बात होगी, जैसे हम किसान हैं तो हम खेती पे आश्रित हैं, गांव में रहते हैं। अब हमारी आमदनी के साधन क्या है, खेती है, और
1: दूसरा
2: दूसरा क्या है सोचिए,
1: अन्य रोजगार, नौकरी,
2: अन्य रोजगार में क्या हो सकते हैं।
1: बिजनेस।
2: जी, और एक और जो बिल्कुल खेती के साथ साथ है वो मैं बताता हूं, वो है दूध का काम हो गया, यानी मतलब पशुपालन का काम। आप अंडे पालन का काम कर लीजिए, मुर्गी रख लीजिए, बकरी रख लीजिए, तो वो अगर खेती में कहीं फेल होता है तो ये हो जाता है, उनका भोजन सारा खेती से आता है, सारा उसी से संबंधित चीजें हैं, ये हो गया। तो मतलब एक से ज्यादा आमदनी के स्रोत जो कि आपके आसपास ही है। अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो वो एक अलग अलग तरह का काम, आप नौकरी करेंगे वो एक अलग तरह का काम है। कोई किसान जो पूरी समय से खेती में नौकरी का कोई उसको चांस नहीं है, तो वो क्या कर, उसको नौकरी थोड़ी मिल जाएगी बेचारे में एकदम, तो वो खेती में ही अदला बदली कर सकता है। तो इस तरह से बहुफसली, एक से ज्यादा फसलें लेना हमेशा उपयुक्त रहता है। फिर इसी तरह इसी क्रम में आप अपने खेत बदलते रहिए, वो फसल चक्र में शामिल हो जाएगा, उससे खेतों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो इस तरह की आपदाएं आती हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम खेती करते करते इनका कोई ना कोई हम समाधान खेती में ढूंढ लेंगे, और आसानी से हम ये जो आपदाएं हैं इनसे थोड़ा पार पा लेंगे। क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में हम कोई अपने यहाँ बैठ के जो परिवर्तन नहीं कर सकते, वो तो होनी है तो होनी है। अभी जैसे कोई कह रहे थे कि एक जगह 5% ज्यादा हुई है, लेकिन 1% 40, एक जगह 40% रेंज कम हुई, तो कितना बड़ा अंतर है अगर आप देखें, बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर जहां 5% ज्यादा हुई है वहां जो फसल होती है 40% वाले ने भी अगर वही फसल उगाई तो उसको तो नुकसान होगा। तो ये कुछ इस तरह की चीजें, इसमें एक से ज्यादा जो मतलब फसलें अलग अलग तरह की उगाना हमेशा प्रासंगिक है और खेती के लिए अच्छा है। दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप बेचने जा रहे हैं, सपोज एक जगह एक ही फसल होती है और सारे किसान वही लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, उसके रेट डाउन भी आ सकते हैं, वही प्रोडक्शन बहुत हो गया। अब जैसे जी एक टाइम पे तो आप देखो कि टमाटर आता है, सबके टमाटर हो गया, तो फिर क्या करते हैं, वो टमाटर फेंक के चले जाते सबको। देखा होगा आपने, किसानों की न्यूज सुनी होगी, क्यों, सभी ने देखा कि पिछले साल टमाटर के रेट ठीक रहे थे, इस साल सबने लगाया। अच्छा लहसुन होता है, लहसुन में भी कभी कभी ऐसा होता है, तो थोड़ा थोड़ा लगाओ, अगर लहसुन के रेट नहीं बढ़े, थोड़ा ही लगाया था मैंने, तो क्या दिक्कत, टमाटर के रेट नहीं बढ़े थोड़ा ही लगाया था, ऐसा करके तो रेट के बारे में भी आपको मंडी भाव भी ठीक मिल जाते हैं। तो ये इसका फायदा है कि एक से ज्यादा फसलें लें। फिर आप ऐसा जो काम करते हैं तो आप अपने लिए चीजें उगा सकते हैं। सपोज आपने सौंफ लगा ली, आपने ठंड के टाइम पे एक एकड़ के एक चौथाई भाग में सौंफ लगा ली, 2 क्विंटल सौंफ हो गई, 8-10 किलो आपने अपने लिए रखी, बाकी बेची, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, हो जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे परिवर्तन करके, पहले मैंने देखा है जब लोग खेती करते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि जो जितने उनके यहाँ इस्तेमाल में होने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर चीजें खेत में पैदा हो जाए, बाकी चीजें जैसे नमक है या कुछ और चीजें वो बाजार से लाते। आप देखिए कितनी बड़ी बात, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता का जो एक संदेश है जो हम अक्सर कहते हैं उसको एक तरह से मूर्त रूप देना हुआ, तो बहुफसली व्यवस्था हमारे भारतीय जीवन में हमेशा उपयोगी है। क्योंकि बहुत ज्यादा फार्म हाउस या लंबे रकबे वाले किसान बहुत कम होते हैं,
1: पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा दी गई जो समस्त जानकारियां हैं वो सभी किसान भाई और हमारे फसल उत्पादकों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। डॉक्टर साहब से मिलने वाली समस्त जानकारियों के पश्चात अब हम कह सकते हैं कि मौसम के परिवर्तन का जो हमारे फसलों पर असर होता है, हम उस असर को नकारात्मक की जगह सकारात्मक की ओर मोड़ सकते हैं, चाहे वो आप फसल चक्र अपनाकर करें या बहुफसली खेती के माध्यम से करें।
0: आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर ए.के. सिंह सर से सुनी कि बदलते मौसम के अनुसार हमको फसलों का चुनाव कैसे करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से हम इजाजत चाहेंगे। खेती किसानी कार्यक्रम के अगले अंक में हम नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत से लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आर्जेलिना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आर्जेलिना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आर्जेलिना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं, तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं, और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आर्जेलिना,
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आर्जेलिना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है और इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
0: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
1: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी इससे संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं, यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं। और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है।
1: जी हाँ अर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण से चीज, लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
1: आरजी रीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है। कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ अर्जेरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: देखिए आरजी रीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है, यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए अर्जेरीना।
0: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
1: कम से कम अर्जेरीना 1 घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल अर्जेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपकी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6। आज की बात बहुत सिंपल है। हम अक्सर कहते हैं ना, आज हमारा मूड नहीं है, पढ़ाई करने का मूड नहीं है, एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर हम हर जरूरी काम सिर्फ मूड देख कर करेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी पीछे रह जाएगी, पता है ना आपको। मूड बदलता रहता है लेकिन हमारे गोल्स रोज नहीं बदलने चाहिए। यही जगह है जहाँ डिसिप्लिन यानी अनुशासन काम आता है। डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, जो जरूरी है उसका छोटा सा हिस्सा आज जरूर करें। तो आज का हमारा यही ब्यूटीफुल कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी हैं और करेंगे बहुत सारी बातें। तो शुरू करते हैं सिलसिला। बताइए रीना, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो आजकल?
0: मैं भी ठीक हूँ। और रीना, क्या तुम भी ऐसा करते हो? अरे यार, बस 5 मिनट और सोने दो ना, अभी मैं उठ जाऊंगी।
1: यार पता नहीं, लेकिन मुझे ना अभी सुबह सुना ठंड लगने लग गई है।
0: और अभी मौसम में बहुत बदलाव आ गया है ना, चेंजेस हो गए हैं। जन्माष्टमी के बाद कहते भी हैं कि सर्दियां शुरू हो जाती हैं और सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंड लगने लगी है। हाँ
1: ये तो है, मन नहीं करता मेरा सच में ना। पहले मैं जल्दी उठ जाती थी, लेकिन अब एक्चुअली क्या होता है कि बस यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और सो लेती हूँ, और थोड़े के चक्कर में ना लेट हो जाती हूँ फिर मैं।
0: फिर घड़ी की तरफ देखते हैं और
1: जल्दी उठ।
0: सुबह का अलार्म शायद हमारी जिंदगी का सबसे ईमानदार दोस्त है, पता है? वो रोज कहता है उठ जाओ, और हम कहते हैं बस 5 मिनट और। फिर 5 मिनट, 10 मिनट होते हैं, 10 से 20, और 20 से अचानक अरे इतनी देर कैसे हो गई? यही छोटी सी आदत हमें बताती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। जल्दी उठना ही डिसिप्लिन नहीं है, असली डिसिप्लिन है जो तय किया जाता है उसे निभाइए। अगर आज आपने तय किया है कि 10 मिनट वॉक करेंगे तो 10 मिनट ही सही, लेकिन कीजिए जरूर। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस अपने फैसलों को अपने मूड से थोड़ा ऊपर रखिए, क्योंकि सुबह की पहली छोटी जीत पूरे दिन का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया है ना कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा और मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, तो आप ना उसको आलस पर मत टालिए, आप मूड पर मत टालिए कि आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं कर, मैं कल से शुरुआत करती हूँ। तो ये चीजें ना आपको, आपकी जो डेडिकेशन है, जो आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका पीछे छूट जाएगा। तो आपने जो खुद से वादा किया है उसको निभाइए और अपनी लाइफ में देखिएगा फिर कितने चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ जब इम्प्रूव होगी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप फिट रहेंगे, तो फिर आपका हर चीज में, हर काम में आपका मन लगेगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कही है कि हर काम में मन लगता है, और जब आप सुबह, लेकिन वो तब है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तब, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये चीज फील किया है जब मैं सबसे पहले उठती थी सुबह सुबह। एक तो वातावरण बिल्कुल शांत, अलग ही नेचुरल हवा आपकी बॉडी के अंदर फील होता है, और सच में ऐसा लगता है कि भाई ये दुनिया है। और जो सुकून मिलता है ना सुबह उठने में, अगर आप लेट उठते हैं तो उसके बाद आप खुद भी फील करेंगे कि आपका सर भारी भारी होने लग जाता है और फिर सारा काम डिले हो जाता है। पहली बात तो ये,
0: फिर पूरे दिन की ना बैंड बज जाती है,
1: कोई भी काम आप ढंग में नहीं कर पाते
0: इसीलिए रीना आपने बोला ना कि सुबह का वो खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सी वो ठंडी नेचुरल हवा जब हमारी बॉडी को छूती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी

0: ये पॉजिटिविटी आती है और वो गोल्डन मॉर्निंग ना हर कोई नहीं देख पाता है। बहुत लकी लोग होते हैं जो सुबह सवेरे का आनंद ले पाते हैं, सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते हैं, क्यों नहीं ना?
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वही हैबिट बहुत अच्छी होती है। आप चाहे देखिए सुबह जल्दी उठ जाइए, फिर दिन में सो जाइए जब आपको टाइम मिलता है,
0: दिन में रेस्ट कर सकते हैं आप। ये बात बिल्कुल सही कह रही ना।
1: लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई लेट उठना है और फिर दिन में भी सोना है, तो एक तो पहली बात तो आप दिन में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा दिन अजीब सा रहेगा, मन भी भारी
0: लीजी रहता है ना, आलस आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एवरीवन, एवरी मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है। लेकिन जल्दी उठने के लिए ना आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, ये तो याद रखो यार। अब आप रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो और आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता, कैसे उठ पाएंगे आप? जब आप जल्दी सोएंगे तभी तो आप जल्दी उठ पाएंगे ना। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ एवरीवन कि रात का अपना रूटीन अच्छा रखोगे ना तो अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी आपका अच्छा ही होगा।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, अदरवाइज फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, हर चीज चेंज होता ही चला जाता है आपकी जिंदगी में। और अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद और साथ ही साथ ये कहा जाता है सुबह का जो आप पढ़ते हैं ना,
0: दादी जी मम्मी पापा कहते थे बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में,
1: वो पूरा दिन दिमाग में
0: रहता है।
1: अगले दिन तक मतलब तुम्हें हमेशा के लिए याद रहता है।
0: हाँ,
1: और ये बात फैक्ट है,
0: ये असर भी करती है ना।
1: हाँ, एक तो देखिए आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता है, आप और आपकी बुक्स आपके साथ होती है, और बिल्कुल सुनसान, कोई एक भी आवाज नहीं आती आपके कानों तक, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो आप सुबह पढ़ सकते हैं आसानी से, और पढ़ाई का मूड का इंतजार मत कीजिए। सुबह के टाइम में ये भी होता है ना कि उठ जाते हैं, किताबें हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वही फिर नींद आती रहती है और किताबों के साथ साथ खुद ही सो जाते हैं। मेरे साथ कभी मतलब बहुत बार हुआ है ऐसे, जब मैं स्कूल टाइम में अक्सर मेरे से होता था कि जब मैं सुबह पढ़ती थी उस टाइम हमारे घर में ये था कि दिन में कोई तुम्हें बोले ना बोले, लेकिन 4 बजे जरूर मम्मी पापा उठा देते थे हमारे कि अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अब मम्मी पापा उठा के चले जाते, मैं बुक हाथ में लिए मस्त नींद में सोती रहती, मेरी मम्मी आती एक चपाटा मार
0: पर नींद सारी गायब हो जाती है।
1: हाँ, तो इसीलिए मन पर मत आश्रित रहिए कि जब मन करेगा जब भी हम पढ़ेंगे। मन तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मन को मनाएंगे, क्योंकि मन पर काबू करना इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको ही परिश्रम करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार थोड़ा थोड़ा करते रहना। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़िए, कल सिर्फ 30 मिनट, एक महीने में सोचिए कितने घंटे हो जाएंगे। आपको एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना, बस आज एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है। तो किताब खोलिए, फोन साइड में रखिए और खुद से कहिए मुझे पूरा नहीं करना, मुझे बस शुरू करना है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं पूरा करूंगी या पूरा करूंगा या बुक आज ही मैं खत्म कर लूंगा, तो ये आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से ही पूरा होता है, कहते हैं ना, जब हम बूंद बूंद से तालाब भरते हैं। तो खुद पर आजमाइए ये चीजें और सोचिए कि मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि एग्जाम्स के टाइम ही हम पढ़ लेंगे, तो वो चीज नहीं होता है, और यही रीजन है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं यार मैं क्या क्या पढ़ू, क्या पढ़ सकता हूँ। जब आप खुद खुद सोच कर देखिए, जब आप खुद एक दिन में एक बुक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो एग्जाम के टाइम में जब इतने कम समय में 5-6 बुक्स कैसे आप कवर कर सकते हैं,
0: पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो उसके लिए जैसे आपने कहा रही ना कि एवरी डे आप 30 मिनट्स पढ़िए, टाइम दीजिए, और ऐसे जब आप रेगुलर 30 मिनट्स अपनी बुक को देंगे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है आप वो पढ़ेंगे, तो इजीली आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपके माइंड पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता है। अदरवाइज एक दिन पढ़ेंगे तो भाई सच बता रही हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और सबसे जरूरी बात है हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक चीज छोड़ देते हैं ना, दूसरी बार उसकी हैबिट डालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन होता है। और सबसे आज के टाइम में क्या है, मैं खुद से ही कन्वर्ट करती हूँ, किसी के ऊपर नहीं करना है। जब मैं खुद फोन चलाती हूँ तो कब से 7 से 10 बज जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता,
0: नहीं पता चलता यार।
1: तो वैसे ही सोचिए, आज मैं सच बताऊँ तो मैं लिखने बैठी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। मतलब इतनी स्लो मेरी राइटिंग हो गई है. पहले ये था कि मैं जल्दी जल्दी लिखती थी,
0: एक घंटे में इतनी सारी यू नो पेपर्स हम कंप्लीट कर देते.
1: देखिए देखा होगा, दो घंटे का पेपर होता था और कितने क्वेश्चन होते थे, हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर देते थे. लेकिन अभी मैं लिखने बैठी हूँ तो मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं दो तीन लाइन लिखते लिखते मेरे हाथ दर्द होने लगे. मन ही नहीं कर रहा है कुछ लिखने का.
0: वो इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया.
1: हाँ, हैबिट खत्म हो गई. हैबिट सबसे बड़ी बात है.
0: आप फोन चलाने की हैबिट है, उंगलियां चलवा लो मोबाइल.
1: ऑनलाइन जमाना है, AI है, कुछ पूछना होता है उससे पूछ लेते हैं. वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है. लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें आने के बाद ना ये असर हमारे ऊपर ही पड़ रहा है.
0: हाँ.
1: क्योंकि हम जो खुद से लिखते थे, खुद से दिमाग लगाते थे, वो चीजें हम नहीं लगा
0: नहीं कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली.
1: तो मुझे लगता है कि भैया फोन को साइड रखिए और खुद से आप करके देखिए,
0: थोड़ा अपने दिमाग को भी दौड़ाइए.
1: हाँ, और आपको पहले वाला जो लाइफ होता था ना उसकी अनुभूति होगी. और फिर आपका दिमाग है ना, मतलब पूरा दिन किताबों में रहेगा, जो भी आप काम उसमें आपका दिमाग रहेगा. एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
0: अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज करने का. सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज एक्सक्यूज क्या है?
1: एक्सक्यूजेज होगा.
0: एक्सक्यूजेज. एक्सक्यूज है, देखिए यहाँ पे.
1: हाँ, एक्सक्यूज.
0: एक्सरसाइज करने का सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज क्या है? कल से कल सुबह से वॉक करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से योगा करूंगी. लेकिन वो कल आता ही नहीं है मैडम. एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपको 2 घंटे नहीं चाहिए. शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की वॉक से हो सकती है. और अगर किसी दिन मन नहीं है तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट और कर लेती हूँ. क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पूरे काम से डरता है, शुरुआत से नहीं. याद रखिए, फिटनेस का रास्ता मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से बनता है. आज सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को दीजिए, शायद यही 10 मिनट आगे चलकर आपकी सबसे अच्छी हैबिट बन जाए. क्यों रीना?
1: हाँ, ये तो देखो तुमने सही बात कही है कि हैबिट आगे चलकर बनी जाती. सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत करो पहले. अगर सोचते रह जाएंगे आज करेंगे कल करेंगे
0: तो करेगी कल तो आएगा ही नहीं. हाँ, कल कभी आएगा नहीं और हम फिट रह नहीं पाएंगे. तो फिट रहना है आपको, यंग दिखना है ना बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह, तो आपको ना एक्सरसाइज भी करनी होगी.
1: जी, अब सोच के देखिए, वो 51 की है.
0: अरे यार, 16-13 साल की लड़की है वो अभी. हाँ, आजकल के जितनी भी यंग्स गर्ल्स हैं उनके यू नो बराबरी वो लेबल पर रहती हैं.
1: मतलब उनके बराबर तो हम भी नहीं है यार, सच बताओ तो. वो जितना मतलब
0: उनकी बेबी
1: हैं,
0: दो उनकी बेबी हैं, वो अभी भी लगती नहीं है कि उनकी बेबी है. ऐसा लगता है कि अभी उनकी शादी हो जाएगी दोबारा से.
1: अभी वो 2-3 शादी कर लेंगी तब भी चल देगी.
0: वो यंग लगेंगी यार. तो इसीलिए हाँ. मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों, आप भी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो एंड वॉक करो. क्योंकि जो फिट है वो हिट है. और आप भी चाहते हैं ना कि आप भी हिट रहेंगे एकदम शिल्पा शेट्टी की तरह. आप भी हिट दिखना चाहती है, फिट दिखना चाहती है और हिट भी होना चाहती है. तो बस उसके लिए आप अपना ख्याल रखो, हेल्दी डाइट लो, एवरी डे एक्सरसाइज करो एंड माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको.
1: और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम भूल गई हो बताना.
0: अच्छा बताइए मैम.
1: खाना
0: नहीं, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है यार. कभी कभी चलता है वो भी हेल्दी, ठीक है. रेगुलर नहीं खाना है क्योंकि आपका घर का बना हुआ सबसे हेल्दी फूड होता है.
1: हाँ, और वो आप खाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे.
0: हेल्दी रहेंगे और घर पर हम एकदम, हमें पता है कि हम किस चीज से बना रहे हैं.
1: और आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जितना जो चीज डालना है आप आसानी से डाल सकते हो.
0: इजीली
1: आपको लगता है कि भाई हम मिर्च में ज्यादा नहीं खाते तो बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे. लेकिन बाहर थोड़ी पता है कि आपके मूड के हिसाब से कोई तो खाना नहीं बनाता.
0: नहीं बनाएगा. या आई एग्री विद यू.
1: उनसे बल्कि आप बोलें, ऑर्डर भी करेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे अच्छा मिर्च कितना डालना चाहिए, अच्छा सर तेल कितना डालो, ये कभी नहीं पूछता है कोई भी. तो सोच कर देखिए, बाहर के खाने अच्छे होते हैं. मैं ये नहीं कहती अच्छे नहीं होते, टेस्टी भी होते हैं, मजा आता है खाने खाकर.
0: भैया ये लड़की हमेशा खाने की बातों पर ही आ जाती है क्योंकि ये खाने पीने की बहुत बड़ी शौकीन है. और मुझे लगता है कि जो खाने पीने का शौकीन होता है ना, वो इंसान कहीं भी जाए उसको ना वो अपने ट्रैक पे आ ही जाता है. तो रीना बहुत बड़ी फूडी लड़की है. इनफैक्ट मैं भी फूडी हूँ बट रीना से ज्यादा नहीं. रीना
1: मैं से ज्यादा गाइज.
0: नो.
1: देखो मैं इसके साथ रहती हूँ, आप नहीं रहते तो आपको नहीं पता है.
0: अच्छा दोस्तों ऐसी बात है, तो एक दिन आप ऑफिस जरूर आए आइए और
1: लेकर आइए,
0: ये तो ठीक है। चलो
1: चलिए फिलहाल अपने
0: अभी तो आप, अभी हम आपको कुछ देते हैं, वो क्या है, एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं और वो एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और भी गपशप करेंगे एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बातें आपके लिए लेकर आए हैं। तो बस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, खुशी ने आपको बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया है और इस तोहफे के बाद हम फिर से कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फोन और डायरेक्शन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अभी फोन हाथ में है, आई नो मुझे पता है कि आप सभी के हाथ में अभी फोन है, खुद से पूछिए मैं इसे किस काम के लिए खोल रहा हूँ। कभी हम नहीं पूछते, इसे नहीं सोचते भी नहीं है कि आखिरकार हम फोन उठा रहे हैं तो किस काम के लिए उठा रहे हैं, मतलब करने जाते कुछ और करने कुछ और लग जाते हैं।
1: अगर हाँ, ये जैसे आपने बोला अभी वाली बात बोली है कि फोन किस लिए चलाते हैं, हम फोन उठाते हैं क्योंकि चलो अपनी आज दोस्त से बात कर लेते हैं, मम्मी को कॉल लगा लेते हैं, और कॉल लगाते तो नहीं लेकिन इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, हाँ फेसबुक पर पहुंच जाते हैं,
0: रील्स देखने शुरू कर देते। अच्छा स्टोरी लगाना है,
1: पर जब एक घंटा हो जाता है ना, जब डाटा का नोटिफिकेशन आता है कि 50% आपका डाटा खत्म हो गया है, तभी याद आता है अरे मम्मी को कॉल करना था।
0: हाँ, उसके बाद हम मैसेज देखते हैं, काम करने या बस आदत से है। हम कहते हैं एक रील देखता हूँ, और फिर मतलब हम यही सोचते हैं ना कि हमें एक रील देखना है, लेकिन एक रील के चक्कर में हम ना जाने दूसरा तीसरा 3-2 घंटे कब खत्म हो जाते हैं हमें भी कुछ नहीं पता होता है, आधा घंटा निकल जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब है फोन छोड़ना नहीं, मतलब फोन का इस्तेमाल आप तय करें, फोन आपकी अटेंशन तय नहीं करे। काम के 20 मिनट में नोटिफिकेशन बंद करके देखिए, हो सकता है आपको पता चले कि आपके पास समय की कमी नहीं थी, बस फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम के ऊपर था। वो तब होएगा जब आप फोन की नोटिफिकेशन बंद करेंगे। एक्चुअल क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, इनफेक्ट पूजा भी करते हैं ना, और फोन का नोटिफिकेशन आ गया तो आरती छोड़ेंगे, पहले मैसेज देखते हैं और पूजा करेंगे, साथ ही साथ अगर भगवान जी के भोग भी लगा रहे हैं ना, फोन आ गया किसी का, जरूरतमंद इंसान का, भैया फेवरेट वाला इंसान है, मन पसंदीदा इंसान है, तो पहले फोन अटेंड करेंगे, वो भगवान जी को बोलेंगे 2 मिनट रुक जाओ, बाद में भोग लगा दूंगी मैं आपका। और ये होता है, मंदिर में जाएंगे तो देखिए माथा टेकने से पहले हम रील बनाते हैं, स्नैप बनाते हैं, पहले वीडियोस बनाने लग जाते हैं, फोटो खिंचवाने लग जाते हैं, और भगवान से कहते हैं अरे भगवान दर्शन तो हम कर ही लेंगे आपका, टेंशन मत लो, सब्र रखो आप, हम उल्टा भगवान को शब्द दिलाने लग जाते हैं।
1: तो रीना जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल कि फोन जो है हमारा नोटिफिकेशन, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए ताकि हम डिस्टर्ब ना हो, है ना। और जैसे आपने कहा कि हम टेंपल में पूजा कर रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा तुरंत माइंड वहाँ पर चला जाता है, तो हमारा माइंड वहाँ से ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो पूरा फोकस एक ही काम पर रखिए, अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए, उससे क्या होगा आपके काम में ना मन लगा रहेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे फोकस्ड के साथ। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है, जब भी आप कोई काम करें तो नोटिफिकेशन ऑफ रखें, ठीक है। चलो अभी हम अब अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे घर के लोगों से डिसिप्लिन सीखना हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में कितने लोग हैं जो मूड देखकर जिम्मेदारी निभाते हैं। माँ का मूड हो या ना हो, घर संभालना होता ही है। पिता का मन हो या ना हो, काम पर जाना ही होता है। एक वर्किंग पर्सन थका हुआ हो सकता है फिर भी जरूरी काम करता है, क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मूड से बड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम जरूरी नहीं, आराम भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, बस फर्क समझिए। जरूरत के समय पर आराम करना और हर जरूरी काम को आप आलस के नाम पर टालना दो अलग अलग बातें होती हैं। आज खुद से यही सवाल पूछिए, मैं सच में थका बस टाल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना रीना कि हम ना, हमारे पास काम होता है और हम उसको बेवजह टाल देते हैं कि नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा, जबकि आप थके वके कुछ नहीं होते हैं, बस आप अपने मूड के ऊपर चले जाते हैं कि आज मन नहीं है। लेकिन आपको ना ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और मुझे मेरे अर्जेंट काम करना है, तो उस समय पे ना आप आलस बिल्कुल ना करें, उस काम को टाले नहीं, उस काम को उसी समय पर करें। और हाँ, अगर जब आप लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत मैं टाइट फील कर रहा हूँ, तो तब आपको रेस्ट करना चाहिए, उस समय पे आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है। जब हमारी बॉडी रेस्ट करेगी तभी आप उस कोई भी काम को अच्छे से कर पाएंगे।
0: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट मांगती है, और सबसे बड़ी बात है कि नींद नींद पूरा करिए। जब तक आप नींद पूरा नहीं करेंगे कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। पूरा दिन आपका बोरियत फील होगा और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में एक गोल्स जरूर बना कर रखिए। कई बार हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। रोज 2 घंटे एक्सरसाइज, रोज 5 घंटे पढ़ाई, आज फोन बिल्कुल नहीं और 3 दिन बाद पूरा प्लान बंद। इसीलिए टारगेट छोटा रखिए। 15 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट वॉक कीजिए, 5

0: इस बुक पढ़िए, छोटा टारगेट पूरा होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर कॉन्फिडेंस आप अगला स्टेप लेने में मदद करेगा। याद रखिए, छोटी जीत मिलकर बड़ी आदत बनती है। आपको आज पूरी जिंदगी डर ली, बस आज एक छोटा सा हिस्सा बेहतर बनाना है और अपने लिए सोचना है, क्योंकि देखिए हम लास्ट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसीलिए बड़ा स्टेप लेने से पहले छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए, तभी जाकर वो बड़े बड़े कदम में परिवर्तन हो जाते हैं।
1: रीना, ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आपको टेरेस पर जाना है और आप चाहते हैं कि बस मैं सीढ़ियां ना चढ़ूं, फटाक से उड़कर पहुंच जाऊं, तो ऐसे हाथ पैर में चोट लगने का खतरा होता है ना, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है।
0: अरे साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं छोटा जॉब नहीं करूंगा,
1: हाँ।
0: मैं कम पैसों का जॉब नहीं करूंगा,
1: लोग ऐसा भी
0: मुझे
1: सोचते
0: तो
1: हैं।
0: सीधा 50,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, तो भैया ऐसा नहीं मिलता है कभी भी। आपको एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तभी उसी हिसाब की आपकी सैलरी भी बढ़ती
1: उसी अकॉर्डिंग।
0: अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे अभी अभी 1,00,000 रुपए मिल जाए, तो पॉसिबल ही
1: नहीं है।
0: आप ऐसे करेंगे, ऐसे सोचेंगे तो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे।
1: तो आपको ना ऐसा नहीं सोचना है डायरेक्टली। देखिए, आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो, और पहली बार तो ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जब आप शुरुआत करते हैं, आज आपको 20,000 मिल रहे हैं, कल आपको 40,000 भी मिलेंगे, क्यों रीना। तो धीरे धीरे पेशेंस रखें, सब चीजें होती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है अपना लाइफ में। और ऑफिस में कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज्यादा है और मन नहीं करता, आज कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर काम सामने देखकर समझ में आता है कि भागने से ही काम कम नहीं होगा। ऐसे समय पर एक तरीका अपनाइए, प्रायोरिटी यानी सबसे जरूरी काम पहले। पूरी लिस्ट देखकर परेशान मत होइए, बस 3 जरूरी काम लिखिए, पहला काम पूरा कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई बार हमारी प्रॉब्लम काम की इक्वालिटी नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग का जो कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए आज का रूल आप बनाइए, एक समय में एक काम कीजिए, फोकस करिए। काम धीरे होगा तो भी चलेगा, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्यों रीना।
0: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, लेकिन देखिए सही के साथ साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते भैया, ये भी बहुत जरूरी
1: है। जब हम बातें करने शुरू करते हैं,
0: भैया मैडम बोलती रहती है, गाना तो सुनाती नहीं है।
1: हम वही कह रहे हैं, जब हम बात करने शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने श्रोताओं को दें, लेकिन उससे पहले गाना भी बहुत प्यारा सा जो रीना जी की पसंद पर हम प्ले करने वाले हैं, और वो आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और एंजॉय कीजिएगा हमारे शो को। आई होप आपको ये शो इंटरेस्टेड लग रहा होगा, मुझे मालूम है। वैसे अपने फीडबैक
0: की गाना सुनाऊंगी, जिंदगी एक सफर है सुहाना,
1: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो कल का किसी को नहीं पता होता है क्या होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आज आपको ये पास वक्त है, आपके पास ये टाइम है, इसे एंजॉय करो। जो भी काम करना है उसे कर लीजिए, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है।

0: तो श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ कल क्या हो किसी को नहीं पता होता है। कल की इनफैक्ट बात छोड़िए, आपको सेकंड का भी नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाएगा। इसीलिए जिंदगी में जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, और कुछ भी काम कल के परसों के ऊपर या आधे घंटे दो घंटे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उसके ऊपर मत छोड़िए। जो करना है अभी करना है और शुरू करना है, बस कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले है गुस्से पर डिसिप्लिन। ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि हम ना चाहते हुए सामने वालों को पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इसीलिए पहले अपने आप पर कंट्रोल करिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई और एक्सरसाइज में नहीं है, हमारे व्यवहार में भी चाहिए। गुस्सा आए और हमने तुरंत बोल दिया, मैसेज आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कहा और हमने उससे ज्यादा कह दिया, बाद में सोचते हैं काश मैं ये नहीं कहता, यानी इमोशनल डिसिप्लिन काम आता है। गुस्सा आए तो तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अगर जरूरत हो तो कहिए मैं थोड़ी देर बाद बात, क्योंकि हर फीलिंग्स पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिएक्शन को रोकना भी सबसे बड़ी जरूरत है, और ये हमारे अंदर सबसे कम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो जैसा बोलता है भैया उसको हम वैसा ही रिप्लाई देते हैं। तो सोचिए आप में और सामने वाले इंसान में क्या ही डिफरेंस रह गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो उसने बोला आपने रिटर्न कर दिया है। इसीलिए जब आपको लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है आपको रिश्ता बचाना है, आपको दोस्ती बचाना है, और साथ ही साथ आप अपना गुस्सा किसी ऊपर ना दिखाए, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं किसी से नहीं बोल सकता हूँ, तो जो आपका मन करे, गाना सुनने का मन करे गाना सुनिए, अकेले बैठने का मन करे अकेले बैठिए, लेकिन किसी को अपशब्द वचन ना बोले, क्योंकि एक बार जब ये जुबान से फिसल जाती है ना, दोबारा वापस नहीं आती है, ये दूसरे इंसान को भी घाव देती है और आप उसके नजरों में बुरे भी बन जाते हो। इसीलिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो इंसान कंट्रोल करना सीख जाता है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाता है।
1: बिल्कुल, क्या बात है यार रीना, तुम तो इतनी प्यारी बातें करती हो, मुझे पता नहीं था, आज ही पता चल रहा है तुम्हारे साथ बैठकर, वैसे मजा आ रहा है इस बातचीत में। अब हम बात करते हैं रीना, हम दूसरों से किया प्रॉमिस

0: निभाने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन खुद से क्या प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगा, इस महीने में पैसे बचाऊंगा।
1: बात ये है कि हम दूसरों का डिसीजन मान लेते हैं, अपना डिसीजन।
0: हम दूसरों से क्या प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश करते हैं रीना, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मैंने उसको प्रॉमिस किया है तो वो मैं निभाऊंगा, दिन रात चाहे मुझे जागना पड़े। अब एग्जांपल आप ही ले लेते हैं, देखो आपकी बहन ने आपको काम दिया शॉपिंग करने के लिए कि मेरे लिए ड्रेस खरीद के लाओ, तो आप कितना रिसर्च कर रहे हो उसके लिए, हाँ परेशान कितना हो रही हो, पर भाई काम दिया है, प्रॉमिस दिया है, निभाना पड़ेगा, है ना। लेकिन खुद से किया प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगी, इस महीने पैसे बचाऊंगी, अब फोन कम चलाऊंगी, और फिर खुद ही भूल जाती हैं, है ना। लेकिन दोस्तों खुद से किया छोटा प्रॉमिस निभाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आज बड़ा प्रॉमिस मत कीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए, आज मैं अपना एक जरूरी काम पूरा करूंगा या पूरा करूंगी, ठीक है। जब वो पूरा हो जाए खुद को क्रेडिट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दूसरों की तारीफ से नहीं आता, खुद को बार बार साबित करने से आता है, जो भी हूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़िए, और अभी फिलहाल हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति, हम आपसे मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कभी बात करेंगे तो बताएंगे रीना जी ने किस शॉप से शॉपिंग की थी, क्योंकि ये बहुत रिसर्च कर रही हैं, एंड बताएंगे आपको, ठीक है। बस आप ऐसे एंजॉय करिए, बिंदास रहिए, और हाँ आपको कोई भी काम कल पर नहीं टालना है, आपको जो करना है आज ही कीजिए।
1: नहीं गाइस, जो करना है 10 दिन बाद करेंगे।
0: अरे अरे यार ये क्या था
1: मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल देते ना किसी को, तो वो सोचता है कि नहीं अभी करना है, जल्द करना है।
0: हाँ, तो आपको अच्छे से अपने काम को करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पता नहीं है दोबारा मिले या ना मिले, ये जो जन्म मिला है, जो जिंदगी मिली है ना, इसको खुलकर दीजिए, जो करना है वो कर डालिए, पर अच्छा काम करना है।
1: चलिए बाय
0: बाय।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much. क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
0: हैं।
1: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: दाई जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल, तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी, वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभालनी करनी है पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते हैं।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: एब्सोल्युटली, तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है,
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
0: एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 to 4 हजार रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल,
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती है, डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे, और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली, बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले। प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है, आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
1: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए।
0: Absolutely.
1: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
1: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
1: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना,
0: इसके
1: पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल,
1: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
0: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं?
1: Exactly.
0: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
1: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया

0: रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP यूपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुजाता जी।
3: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
4: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है, वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
3: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
4: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं, तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं जैसे स्क्रब टाइफस, कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
3: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
4: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
3: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
4: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
3: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत

0: जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरिनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी, तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना न केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता ये स्वास्थ्य की कुंजी है और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हिंदू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: दो रजत पदक जीते भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका की सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
4: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
2: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
5: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
6: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
7: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
6: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
9: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
10: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच

0: मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: पच्चीस से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
6: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
5: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
7: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
8: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, महिला मंच। और आपको पता है जब महिला मंच कार्यक्रम लेकर हम आते हैं तो मैं अकेली नहीं, मेरे साथ में रीना जी होती है या फिर रीना जी के साथ खुशी होती है। तो आज मेरे साथ यहाँ पर रीना जी हैं और आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बेटी है तो खर्च होगा, ये सब ये सोच अब धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। आज की बेटियाँ स्टडी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, नौकरी करके अपना खर्च खुद उठा रही हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता और परिवार का सहारा भी बन रही हैं। कभी कहा जाता था कि इतना पढ़कर क्या करोगी, आज वही बेटी मेहनत से घर का खर्च संभालने में हाथ बटा रही हैं। ये सिर्फ कमाई की बात नहीं है, ये उस आत्मविश्वास की बात है जो एक लड़की को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देता है। महिला मंच में आज बात उन्हीं बेटियों की है जो पढ़ रही हैं, जो स्टडी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं और परिवार को भी संभाल रही हैं।
9: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, जैसे कि तुम ही देख लो, तुम घर का भी काम कर रही हो, इनफैक्ट मैं भी हूँ तुम्हारे साथ, तुम नहीं हो, और भी जो मेरे साथ है, हमारे साथ
8: बहुत सारी वुमेन हैं जो घर भी मैनेज कर रहे हैं और स्टडी भी कर रही हैं।
9: हाँ, बहुत सी लड़कियां भाई यही सोच रही है कि अब तक तो मम्मी पापा ने हमें पढ़ाई है, हमारे ऊपर खर्चा कर रही है, लेकिन अब हम भी खुद पढ़ते पढ़ते कुछ स्टडी कर लेते, जॉब कर लेते हैं और खुद का खर्चा खुद भी निकाल लेते हैं और फैमिली वालों को भी हेल्प कर देते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना हूँ। आवाज सुनकर तो पहचानेंगे होंगे। आपको अपनी पहली कमाई याद है, वो पैसा कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब अपनी मेहनत का कमाया जाता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है, खासकर उस लड़की के लिए जिसने पढ़ाई के साथ मेहनत की, नौकरी हासिल की और पहली बार अपने हाथ में घर में कुछ खरीदा या माता पिता को पैसे दिया। उस दिन सिर्फ पैसा मिले, एक एहसास मिले कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूँ। आज बहुत सी बेटियाँ अपनी फीस खुद भरती हैं, अपने छोटे बड़े खर्चे खुद उठाती है और घर की जरूरत में भी साथ खड़ी होती है। यही आत्मनिर्भरता, जहाँ लड़की किसी पर बोझ ना हो बल्कि खुद और अपने परिवार की ताकत बनती है और हमेशा यही कहती है कि पापा मैं आपके साथ हूँ, आप अपने आप को कभी अकेला फील ना करें। तो सोचिए उस पिता को कितना गर्व होता होगा कि कहाँ दुनिया कहते हैं कि बेटियों को मत पढ़ाओ, और जब ये वाली बातें आ जाएंगी ना हर किसी के घर में कि उनकी बेटी कमा भी रही है और पापा से ये बोल रही कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे, तो एक बाप को ना एक सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व फील होता है कि मेरी बेटी कुछ आगे कर रही है और अपनी जिंदगी में जो करेगी अच्छा ही करेगी। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि बेटियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, बेटियां पढ़ती हैं तभी भविष्य बनता है और अपने घर के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं और आपको उन पर गर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल भी वो बन जाती है कि शर्मा जी की बेटी ने तो भैया बहुत अच्छा काम कर रही है, जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है, घर का थोड़ा हाथ भी बटाती है। तो सोचिए आप भी कर सकती हैं, जो लड़कियां सोचती हैं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, आप बिल्कुल सोचिए मत, जो करना चाहती है बिल्कुल करिए, बस आपके फैमिली आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है।
10: फैमिली सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है रीना। और जैसे नौकरी के साथ घर मैनेज करना, आपने अभी बात की, नौकरी करना आसान नहीं होता और नौकरी के साथ घर संभालना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सुबह उठकर घर के काम, फिर तैयार होकर ऑफिस जाना, पूरे दिन काम करना और शाम को वापस आकर घर की जिम्मेदारियां देखना, कई महिलाओं की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। और फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है क्योंकि वो जानती है कि उनके नाम उनके काम से सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदल रही बल्कि उनके परिवार की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। और आज की जो गर्ल्स हैं देखो, वो ऑफिस भी मैनेज करती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, वो घर की जिम्मेदारी भी बराबरी का मतलब भागीदारी वो निभा रही हैं। इसलिए ये काम को सिर्फ नौकरी मत समझिए, उसके पीछे उनकी मेहनत, समय और बहुत सारे समझौते भी होते हैं। जब एक लड़की बाहर निकलती है ना घर से जॉब के लिए, तो कई बार तो उसे ताने भी सुनने को मिलते हैं। इनफैक्ट उसको भी मिलते हैं और उनकी फैमिली को भी मिलते हैं कि लड़की को कमाने के लिए भेज रहे हैं, लड़की के पैसों पर अब माँ बाप राज करेंगे। इस तरह से सोच होती है ना, कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अब तो भैया लड़की काम कर रही है, नौकरी कर रही है और नौकरी लड़की की कमाई खाएंगे, इस तरह से कुछ बोलते हैं लोग।
9: अरे इस तरीके से सुनने को भी आया, बहुत से सुनने को आया कि एक बात सोच के देखो, जिस माँ बाप ने उसे पाला बड़ा करा, उसके ऊपर इस तरह खर्चे किया, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो फैमिली के लिए कुछ करे?
10: बिल्कुल होती है जिम्मेदारी। फैमिली को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा रीना?
9: बिल्कुल, जो दुनिया कह रही है कि बेटी के खर्चे पर अब घर चलेंगे, तो वो थोड़ी दे देंगे हमारे खर्चे ला के, वो सिर्फ बात बना सकते हैं।
10: लोगों का काम है बात बनाने का, है ना?
9: ये तो है,
10: तो लोगों की बातों को मत सुनो। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, तो बस आप अपनी ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि लोग पीछे गिराने वाले ना हजार मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले, आगे पुश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। और वो अगर मिले हैं ना, तो वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं कि वो आपका नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो। तो बस आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनिए और आप जिंदगी में आगे बढ़ते चलिए।
9: खुद सोच कर देखो, माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते? उनकी हिम्मत बनने के लिए ना, उनकी सहारा बनने के लिए। तो बन रही है तो उनको बनने दीजिए, उनको ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए बल्कि उनका सपोर्ट करिए। और आप भी अपने बच्चियों को सपोर्ट करिए,
10: उनको अच्छी एजुकेशन दिलाइए, पढ़ाई कराइए। और अगर वो उनका कुछ ड्रीम है जो आप करना चाहती हैं, तो उसमें भी आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना, तो ऐसा लगता है रीना कि हमने पूरी दुनिया जीत ली है।
9: ये तो बिल्कुल सही कहा। और अब बात आती है अपनी कमाई, अपना आत्मविश्वास।
10: अरे जब पैसा मिलता है तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है यार।
9: अपनी कमाई का मतलब सिर्फ पास पैसा होना नहीं है, अपनी कमाई का मतलब है अपने फैसलों में आत्मविश्वास। जब लड़की अपनी मेहनत से कमाती है तो उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे पता होता है कि अगर कोई चीज चाहिए तो वो मेहनत करके उसे हासिल कर सकती है, चाहे वो अपना फोन हो या अपनी पसंद की ड्रेस लेना हो, पढ़ाई का खर्चा उठाना हो या घर में माँ के लिए कुछ खरीदना हो। अपनी कमाई से किया गया हर छोटा काम उसे अंदर से मजबूत बनाता है। इसीलिए बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें हुनर दीजिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और मैं हर गर्ल से यही कहना चाहूंगी कि भैया आप अपने पैरों पर खड़े होइए आप, क्योंकि कल को आपको ना किसी के आगे अपनी हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 2 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए। अगर सोचिए सामने वाले ने आपको मना कर दिया तो उस टाइम क्या बीतती है? उस टाइम दिमाग में यही आता है कि काश मैंने कुछ कर ली होती, ताकि मैं मतलब देखिए फैसले की बात नहीं है, आप अपनी मर्जी की चीजें खुद तो खरीद सकते हैं ना, इतनी आत्मा को तसल्ली तो आप खुद दे सकते हैं कि उससे ही खाना खुशी।
10: और आजकल देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप उसको और इम्प्रूव कीजिए, इनहेंस कीजिए। जैसे आप अगर अच्छा मेहंदी लगाती हैं तो आप एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकती हैं। आप अगर अच्छा डिजाइन के ड्रेस बनाते हैं तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकती हैं, अच्छे सूट डिजाइनिंग के आप बना सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छा स्कोप भी है रीना,
9: ड्रेसेस वाले फैशन में तो बहुत है,
10: है ना? और देखो आजकल हम नॉर्मल भी ड्रेसेस बनवाते हैं, शलवार शूट बनवाते हैं, तो उसके लिए भी हमें आई रिमेम्बर 300 रुपीज आते हैं ना, और ज्यादा ही देते हैं।
9: सिंपल सूट की महंगाई बढ़ चुकी है,
10: सिंपल सूट की अगर हम नॉर्मल बनवाते हैं तो 300 रुपए जाते ही हैं।
9: 300 नहीं जाते यार, पहले जाते थे वो, अब तो 500 के समथिंग है।
10: 500 सिंपल सूट की?
9: अच्छा,
10: जब मैंने सिलवाया था तो 300 लिए थे मुझसे, नॉर्मली बनवाया था।
9: हाँ,
10: मैंने
9: जो पहले के टाइम था वो मैं भी जब बनवाती थी, लेकिन अब तो रेडीमेड आ चुका है हर चीज।
10: हाँ,
9: रेडीमेड ही खरीद लेते हैं।
10: हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप उसको इम्प्रूव करो एंड घर बैठा पैसे कमाओ। आजकल तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया आपके पास है, आप अगर कोई भी चीज अच्छा, आपके अंदर कोई स्किल है, आप जो कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो आप वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल सकते हैं। उससे भी जब आपकी रिच बढ़ेगी, लोग देखेंगे, तो आपका घर बैठे काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। चाहे आप अच्छा कुकिंग करती हूँ, वैसे रीना कुकिंग की बात अभी आई है तो आप बताओ, आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो?
9: कुछ भी, एवरीथिंग।
10: कुछ भी बना लेते हो? अरे वाह। नहीं, एक अपना फेवरेट जो आपको पसंद हो और आप सोचती हो कि अगर मेरे घर गेस्ट आए तो मैं ये अपना फेवरेट बनाकर खिलाऊंगी, जो हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है।
9: देखो, अगर मैं अपनी पसंद की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है छोले चावल, दाल चावल।
10: अरे वाह, क्या बात है।
9: मतलब ये ओल्ड टाइम भी कहेगा ना मुझे कि तुम खा लो, खा सकती हूँ। मेरा इतना फेवरेट है, बहुत ज्यादा है।
10: ओके, और मुझे को राजमा चावल बहुत पसंद है।
9: राजमा चावल मेरे पहले थे, लेकिन अब मुझे छोले बहुत पसंद आने लगे हैं।
10: मुझे राजमा पसंद है। चलो, अपनी बातें तो हम करते रहते हैं, है ना। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करने वाले घर वालों के लिए कमाना। जब बेटी अपनी पहली कमाई से माँ के हाथ में पैसे रखती है ना, तो वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, उसमें उसकी पूरी मेहनत छिपी होती है। ऑफिस की थकान, आने जाने की परेशानी, काम का प्रेशर, इन सब के बावजूद जब वही लड़की घर की जरूरत में अपना योगदान देती है तो परिवार को एक अलग ही तरह का सहारा मिलता है। आज बहुत सी बेटियां अपने माता पिता की दवाइयों से लेकर घर के छोटे बड़े खर्च तक खर्च तक में मदद कर रही है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं करती है, उन्हें करना ही है, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती हैं। बेटी जब परिवार का सहारा बनती है ना, तो पूरा घर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। क्यों रीना?
9: ये तो तुमने सही कहा है, घर मजबूत हो जाता है और सभी फैमिली मेंबर एक साथ होकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम अब बात करने वाले हैं, पहले एक यार गाना सुन लेते हैं, मुझे ये लगता है।
10: चलो, लगता नहीं है, सुन लेना चाहिए। हमारे जो लिसनर्स है ना, वो भी इंतजार कर रहे हैं। खुशी जी बातें तो बहुत अच्छी कर रही है, रीना भी, लेकिन एक गाना भी हो जाए तो फिर मजा आ जाता है। जैसे हम दाल बनाते हैं ना, और दाल के बाद उसमें ऊपर से तड़का लगाते हैं, तो वैसे ही हमारे शो में भी तड़का लगना चाहिए गाने का।
9: जी बिल्कुल, चलिए हम आपको बहुत गाना सुनवाएंगे और मिलते हैं आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा गाना सुना है और ये प्रोग्राम भी बेटियों के लिए है, तो बेटियों के लिए गाना प्ले किया था, बढ़ती रहो आगे तुम। और लड़कियों की पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने से मत जोड़िए, पढ़ाई लड़की को सोचने की आजादी देती है, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता देती है और अपनी जिंदगी के फैसले लेने में कॉन्फिडेंस देती है। हाँ, पढ़ाई के बाद नौकरी मिले तो आर्थिक आजादी भी मिल जाती है, लेकिन अगर किसी वजह से नौकरी नाम भी हो, तभी भी शिक्षित लड़की अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार में फैसलों और अपने भविष्य से ज्यादा समझदारी से संभाल सकती है। इसीलिए बेटी को पढ़ाना सिर्फ उसकी जिंदगी में निवेश नहीं है, ये आने वाली पूरी पीढ़ी में निवेश है। लड़की होकर इतना काम, ये बहुत क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है। आज भी कभी कभी किसी लड़की को सुनने को मिलता है, इतना काम क्यों करती हो? लेकिन शायद सवाल ये होना चाहिए, इतना कुछ करने के बावजूद तुमने खुद को कैसे संभाला? लड़कियां पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, घर के काम करती है, परिवार को समय देती है और कई बार अपने सपनों को भी थोड़ा पीछे रख देती है। अब समय आ गया कि लड़की के काम को सवाल से नहीं, सम्मान से देखना चाहिए। वो नौकरी करे या अपना बिजनेस शुरू करे, घर संभाले या करियर बनाए, उनका फैसला उसकी काबिलियत और उसकी पसंद के आधार पर होना चाहिए।
1: अपनी जरूरतें खुद पूरी करना, ये भी मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आर्थिक आजादी का मतलब ये नहीं है कि लड़की घर से अलग हो जाए, इसका मतलब है कि अगर उसे अपने लिए कोई जरूरी चीज चाहिए तो वो उसे अपनी मेहनत से पूरा करने की क्षमता रखती है। आज कई लड़कियां अपनी सैलरी से मोबाइल का रिचार्ज कराने से लेकर घर का राशन तक खरीदती हैं। कोई अपनी छोटी बहन की फीस में मदद करती है, कोई माता पिता के लिए दवाई ला रही है और कोई अपने भविष्य के लिए पैसा बचा रही है। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों से आत्मनिर्भरता बनती है। बेटी और बेटा बराबर है ना, सब बोलते हैं ना कि आजकल तो बेटा बेटी दोनों बराबर है। अगर बेटा पढ़कर नौकरी करता है और घर के खर्च में मदद करता है तो हमें गर्व होता है ना। फिर बेटी ऐसा करे तो गर्व क्यों ना हो। आज की बेटियां साबित कर रही हैं कि जिम्मेदारियां उठाने के लिए सिर्फ बेटा होना जरूरी नहीं है, बेटी भी पढ़ सकती है, कमा सकती है और परिवार के लिए मजबूती से खड़ी हो सकती है। बराबरी का मतलब बेटा और बेटी बिल्कुल एक जैसे हों, ऐसा नहीं। बराबरी का मतलब है दोनों को समान मौके मिले और दोनों की मेहनत की समान इज्जत हो। इक्वल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रीना।
0: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा है, बेटा हो या बेटी बराबर होते हैं। लेकिन कई घरों में आज भी सिर्फ बेटे को बोलते हैं भैया वाह कमा के दे रहा है, तो बड़े गर्व की बात। और जब बेटी कमाती है तो खुशी क्यों नहीं होती है? मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी खुशी उसके लिए आप रखेंगे ना, उसके लिए वो बहुत बड़ा होता है। तो बराबर सिर्फ कहने से नहीं होता है, बराबर मानिए तब जाकर बराबरी कहा जाएगा। नौकरी के पीछे की मेहनत, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि वाह तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तू तो पढ़ लिख कर कमा रही है, मतलब ऐसी किस्मत हमारी भी हो जाती, लेकिन कोई ये नहीं पूछता उसके पीछे की कितनी मेहनत करी होगी उसने। किसी लड़की को ऑफिस में बैठकर काम करते देखकर लगता है उसकी जिंदगी कितनी आसान, लेकिन उसके सुबह से पूछिए, समय पर उठना, घर देखना, तैयार होना, रास्ते का ट्रैफिक, ऑफिस का काम, डेडलाइंस और फिर घर लौटकर परिवार को समय देना, ये सब एक साथ संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए जब कोई लड़की अपनी नौकरी को लेकर मेहनत करती है तो सिर्फ उसकी सैलरी मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए, उसका समय देखिए और उसके पीछे की जिम्मेदारियां देखिए। हर वर्किंग गर्ल्स की कहानी के पीछे एक अलग स्ट्रगल होती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं पैदा होते उसकी जॉब नहीं लग जाती है, उसके पीछे मेहनत होता है। जैसे हम चलने के लिए परिश्रम करते हैं, वैसे ही जॉब के लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ते हैं।
1: एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे आरजी की जॉब कितनी इजी होती है।
0: हाँ, करेक्ट,
1: कि बस आकर बातें करकर और गाने चलाकर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे की तैयारियां, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, नेक्स्ट हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो लेकिन हम हमेशा हैप्पीनेस के साथ शो को प्रेजेंट करते हैं।
0: कभी हमें, मतलब मेरे को 104 फीवर था, तब अभी भी हमारा गला खराब था, इनफेक्ट तुम्हारा भी गला कितना खराब था, फिर भी जब भी देखते थे ना एकदम खांसी आने वाली होती है, फेडर ऊपर करते हैं,
1: नीचे करते थे जैसे हमें
0: फेडर एकदम नीचे करते हैं,
1: हाँ डाउन करते थे ताकि हमारी खांसी, हमारी प्रॉब्लम्स हमारी ऑडियंस तक ना पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारे सभी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो हैप्पी रहें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर हम भी प्रॉब्लम लेकर बैठ जाएंगे तो चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी सही नहीं होंगी। तो हमारा काम होता है कि खुद की लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों लेकिन सामने वाले को हम खुशियां दें,
0: वही असली बाजीगर कहलाता है,
1: वही असली बाजीगर जी। वो कहते हैं ना,
0: मारी छोरी किसी छोर होते कम
1: कम थोड़ी है, हाँ।
0: और हमारी अभी टीम इंडिया जो लड़कियों की टीम है धमाल मचा रही है भैया, बहुत ज्यादा धमाल मचा रही है। मतलब मैच कहते एक टाइम ये कहा जाता था खुशी, अरे यार लड़कियों के मैच कौन देखेगा, मैं तो नहीं देखने वाला हूँ। अच्छा तू देखने वाली है, तू देखने वाला, ये क्वेश्चन आता था। और जब लड़कियां जीत गई तो आज करोड़ों आबादी और देशवासियों का लड़कियों की तरफ जो है उनके गेम की तरफ देखने के लिए भैया ने भी पहले टिकट बुक करेंगे हम।
1: हाँ अब इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है,
0: क्योंकि उनसे पहले प्रूफ मांगा जाता कि तुम वाकई में कर सकती हो या नहीं कर सकती हो, अगर तुम कर सकती हो तभी तुम इसके काबिलियत हो, अदरवाइज नहीं हो। तो उन्होंने प्रूफ भी दिया,
1: उनके दिलों पर राज कर रहे हैं, वो दिलों पर राज कर रहे हैं, करोड़ों दिलों पर राज कर रही है हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन।
0: जी बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम माँ बाप का सिर ऊंचा करना, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बेटी खुश रहे और अपने पैरों पर खड़ी हो। जब बेटी पढ़ाई पूरी करके अपने दम पर नौकरी हासिल करती है तो पहले सैलरी पाती है और फिर माता पिता के लिए कुछ करती है तो उसे खुशी को शब्द में बताना मुश्किल है। कई बेटी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है और उनके माता पिता गर्व करते हैं, ये हमारी बेटी है, शायद इसे बड़ी उपलब्धि किसी बेटी के लिए कुछ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल, जब हमारे प्राउड से हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, जब हम अच्छा करते हैं, तो उससे बड़ा और क्या प्राउड मोमेंट हो सकता है, बताओ हमें रीना।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने और मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
1: मम्मी पापा ने हमें इतना स्ट्रगल करके पढ़ाया है लाइफ में, इतनी मेहनत करके, और जब हम सफल होते हैं तो वो भी खुश होते ही हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीना, लड़कियों को सपोर्ट चाहिए। किसी लड़की के सक्सेस होने के पीछे उसकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन कई बार परिवार का सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है। जल्दी ऑफिस जाने देना, देर से आने पर समझना, घर के काम में हाथ बचाना या बस इतना कहना तुम कर सकती हो, ये बात लड़की को बहुत ताकत देती है। हर लड़की को रास्ते में किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसकी काबिलियत पर भरोसा करे, इसलिए बेटियों को सिर्फ सलाह मत दीजिए, उनके सपनों के रास्ते में उनका साथ भी दीजिए, उनके साथ चलिए। और कहते हैं ना कि बेटियों को जब आप हिम्मत देते हैं ना तो वो आसमान छूने की ताकत रखती है।
0: अपने कपड़े, मोबाइल, ट्रैवल, पढ़ाई, छोटी जरूरतें जब वो अपने मेहनत की कमाई की पूरी करती है तो उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसे बड़े फैसले लेने में हिम्मत देता है। आत्मनिर्भरता एक दिन में नहीं आती, उसकी शुरुआत अक्सर पहली कमाई और अपने छोटे खर्चे खुद उठाने से होती है। और एक बात और भी हम कहते हैं ना कि घर का काम है सिर्फ लड़कियां ही करेगी, क्यों? घर का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, हर किसी को मिलजुल कर करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। सोचिए कल को लड़का कहीं जाएगा और जब उसको कुछ आएगा नहीं तो कैसे अपने लिए कुछ कर पाएगा, फिर तो वही है बाहर से ऑर्डर करो, बाहर का खाना खाओ और फिर बीमार पड़ो। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम कनेक्ट होते हैं श्रोता और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और हम बात कर रहे थे घर का काम सिर्फ लड़की का नहीं होता, अगर महिला नौकरी करती है तो घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी क्यों? ऑफिस में काम करने के बाद जब महिला घर आती है उसे घर के सारे काम करने की उम्मीद करना सही नहीं है। घर परिवार का है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की होनी चाहिए। पति, भाई, पिता या बच्चे, हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से थोड़ा थोड़ा काम कर सकता है ताकि उसको अंदर से खुशी भी होगी। जब परिवार मिलकर जिम्मेदारी उठाता है तो महिला के लिए करियर और फैमिली दोनों में संभलना आसान हो जाता है। क्यों सही कहा ना खुशी हमने?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब एक गर्ल्स घर आती है ऑफिस से थक हार कर और जब उसको फैमिली सपोर्ट करती है, छोटे छोटे काम सब मिलकर करते हैं, तो उससे फैमिली संभालना ना आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजी हो जाती है सारी चीजें। और बात करते हैं बेटियां परिवार की ताकत है। बेटियों को अक्सर घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन आज की बेटी सिर्फ प्यार और खुशियां नहीं ला रही, वो अपने परिवार की ताकत भी बन रही हैं। वो स्टडी कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने खर्च उठा रही हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ आर्थिक रूप से भी खड़ी हैं। ये बदलाव बहुत खूबसूरत है क्योंकि इससे बेटियों को भी ये भरोसा मिलता है कि उनका परिवार उन पर विश्वास करता है। और जिस बेटी को परिवार का भरोसा मिल जाए उसके लिए मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान हो जाते हैं।
0: ये तो तुमने सही कहा, लेकिन अब देखिए हम यहाँ से जाने की इजाजत भी लेंगे, लेकिन जाते जाते एक और बात। बेटियों के नाम एक सलाम। आज का महिला मंच उन सभी बेटियों और महिलाओं के नाम जो सुबह से रात तक अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, जो पढ़ी, मेहनत की, नौकरी हासिल की और अपनी कमाई से अपना खर्च उठाया और जरूरत पड़ने पर परिवार के लिए भी खड़ी हुई। शायद उसकी मेहनत की हर दिन तारीफ ना होती, लेकिन उसकी वजह से कई घरों में उम्मीद बनती रहती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी कोई बेटी है, बहन, पत्नी या माँ है जो अपने दम पर आगे बढ़ रही है, तो आज उसे एक बार जरूर कहिए, हमें तुम पर गर्व है। क्योंकि आत्मनिर्भरता, महिला सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वो अपने आसपास की कई जिंदगियां बदलने की ताकत रखती है। और श्रोताओं, हम लेते हैं इसी के साथ जाने की इजाजत। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और यूं ही अपना प्यार हमारे रेडियो के लिए बरसाते रहिए और हमारा रेडियो सुनते रहिए। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और एवरीवन शो का नाम आपको मालूम ही है ना, संडे। संडे टू संडे हम आते हैं बिंदास फोल शो में, और अभी समय हुआ है 3:24। बाहर गर्मी अपने पूरे शवाब पर है, धूप भी आज कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम चाहे जितना भी गर्म हो, हमारी बातें अगर दिल से हो तो माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है। तो चलिए आज फिर करेंगे थोड़ी मस्ती, थोड़ी चटपटी बातें और ढेर सारी दिल की बातें। एंड एवरीवन, क्योंकि शो का नाम है बिंदास फोल, जो दिल में है वही जुबान पर है, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचानी है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। चाहे आप कार में हो या आप घर पर हो, बस प्यारी सी स्माइल कर दीजिएगा और सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक आप सभी के लिए। कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद खुशी आपसे मिलती है।

हेलो हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। शो का नाम है बिंदास फुल। जी हाँ, आपको बिंदास होकर बातें करनी है और आज की दोपहर मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी है, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अगर बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम की वजह से इमरजेंसी, तो अपना छाता अम्ब्रेला प्लीज अपने साथ लेकर जाइए एंड उससे आप धूप से बच सकते हैं। ओके, और हाँ, पानी की बॉटल अपने पास रखिए, पानी पीते रहिए। और हाँ, मुझे अपने मैसेज भी पहुंचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अगर सफर में आप मुझे सुन रहे हैं इस समय, ऑन द वे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सो एंड मैम, प्लीज केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा। कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: और गर्मी बहुत ही ज्यादा है ना, तो एक ट्रैक तो बनता है ना हाई गर्मी, जो वो सबकी जुबान पर चढ़ा होता है। जैसे ही धूप बहुत ज्यादा सुबह सवेरे से निकल जाती है और गर्मी होती है, सबकी जुबान पर यही होता है हाई गर्मी। तो चलिए ये ट्रैक सुनते हैं एंड उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे मैं मालूम करने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब इजीली दे पाएंगे। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, यूं ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: एसी चला दो यार।
2: सही है सही,
3: मजा ही मजा ब्रो।
4: चलो शुरू करते हैं

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

Hi everyone, good afternoon. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6. और दोस्तों कहते हैं ना कि बचपन की दोस्ती और स्कूल की यादें उम्र के साथ ना पुरानी नहीं होती बल्कि और भी खास हो जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारी वीडियो वायरल हो रही है. करीब 50 साल बाद 1976 बैच के कुछ पुराने दोस्त अपने उसी स्कूल में लौटे जहां उन्होंने साथ मिलकर अपना बचपन बिताया था. और सबसे खूबसूरत बात तो ये रही कि सभी दोस्त स्कूल ड्रेस पहनकर पीठ पर स्कूल बैग और हाथ में बच्चों वाली पानी की बॉटल लेकर स्कूल पहुंचे. उन्हें देखकर ना ऐसा लग रहा था जैसे ये वक्त कुछ पल के लिए ना पीछे लौट गया है और चेहरे पर वही बचपन वाली खुशी से ना मतलब चेहरा उनका खिलखिला उठा और यादें फिर से ताज़ा हो गई. और सच ही है दोस्तों, स्कूल छूट जाता है लेकिन स्कूल की यादें और सच्चे दोस्त कभी नहीं छूटते हैं. और दोस्तों आज एक सवाल मेरा भी आपसे है, बहुत सिंपल सा है. आपके स्कूल का वो कौन सा दोस्त है जिसे आज भी आप बात करते हैं, आपको बचपन की याद आ जाती है? बताइएगा उनका नाम कौन है, वो आपके ऐसे दोस्त जिनसे आप आज भी बात करते हैं तो आपको पूरी बचपन की यादें वापस आपकी आ जाती हैं. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896. जी हाँ दोस्तों, सवाल मेरा है आपके स्कूल का वो कौन सा दोस्त है जिससे आज भी आप बात करते हैं ना तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है? बताइएगा उस दोस्त का नाम और साथ में अपना नाम भी मुझे मेंशन कीजिएगा. और उस दोस्त के साथ आपकी सबसे प्यारी याद क्या थी? मैं यकीन नंबर रिपीट करती हूँ, 9837896896. ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको मैसेज करना है. शो का नाम बिंदास बोले, जहाँ पर हम बिंदास होकर बातें करते हैं. नो टेंशन, नो ड्रामा, ओके. ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ बांटना खुशी का काम है. और कुछ अमेजिंग ट्रैक यहाँ पर सुनते हैं, उसके बाद लौट कर मैं आती हूँ. वो दिन भी क्या दिन थे यार, सच में.

0: हुआ?
1: ओ, आज सीनियर्स ने बोला कि तुम्हारे साथ फिल्म देखनी पड़ेगी।
0: मैंने बोला मूड नहीं है। तो
1: फिर उनका मूड खराब हो जाएगा।
0: अन्नी की यही बात दूसरों से अलग थी। उसने कभी मुझ पे गिव अप नहीं मारा।
2: भाई तो प्यार मांगने जा रहा है कि भीख? ये भाई अब लग रहा ना हीरो।
0: तुम ये सब मुझे इंप्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे?

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों हम आप ही के साथ हैं और अभी 5 बजे तक हम आपके साथ ही रहने वाले हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ये हमने आपसे प्रॉमिस किया है। और अब आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मैसेज हमें पहुंचाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आज मैंने एक सवाल पूछा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। आपके स्कूल का वो कौन सा दोस्त है जिससे आज भी आपको बात करके आपको अपना बचपन याद आ जाता है, बचपन की यादें याद आ जाती हैं। नाम बताइएगा उनका और साथ में हुई बातें कि उस दोस्त के साथ आपकी सबसे प्यारी यादें कौन सी हैं। जी हाँ।

वो बचपन वाले दौर में चले जाते हैं, जहां पे कोई टेंशन नहीं थी। नेक्स्ट पल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एंजॉय करना, हैप्पी रहना, वो ब्यूटीफुल मोमेंट। तो बताइएगा मुझे, वो बचपन के दोस्त आपके कौन हैं, जिनसे बात करके आपको आज भी बचपन की यादें फिर से रिमाइंड हो जाती हैं, आपके चेहरे पर प्यारे सी खुशी आ जाती है। इतना सोचिए मत, जल्दी से बताइए। मैं आपको सुनवाती हूँ अभी कुछ अमेजिंग ट्रैक ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी।

क्या बात है दोस्तों, ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी शादी में जरूर आना। और इस ट्रैक में बनारस का नाम सुनते ही बनारस की गलियों का जिक्र हुआ तो हमारे मन में भी एक मतलब उत्साह जगा कि हमें भी काश हम भी बनारस की गलियों में होते हैं, मतलब यादों में खो गए। और गाने सच में दोस्तों इतने खूबसूरत होते हैं ना कि इंसान मतलब कैसे भी सिचुएशन में हो, वो परेशान हो, लेकिन जब खूबसूरत गाने प्ले होते हैं ना तो मूड भी अपने आप हैप्पी हो जाता है। और दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्लेबाजी से दिल जीतने वाली रोहित शर्मा जी ने अब टीवी की दुनिया में भी कदम रख दिया है। फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा का प्रीमियर शनिवार को हुआ। पहले एपिसोड में श्रेयस शार्दुल ठाकुर, अभिषेक नायर और कुंजाल खेमी जैसे जाने माने चेहरे भी नजर आए। शो के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों के प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कई लोगों ने रोहित शर्मा जी के नेचुरल स्क्रीन पोजेस और कमिंग टाइमिंग को पसंद किया, यानी क्रिकेट के मैदान के बाद अब रोहित शर्मा जी का एक नया अंदाज दर्शकों के सामने है। और एवरीवन अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए खूबसूरत गाने तो आप सुन ही रहे हैं एंड मुरादाबाद के बारे में भी बात करने वाले हैं, अपने सिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और आज अपने मुरादाबाद में क्या कुछ स्पेशल हुआ है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आप बने रहिए खुशी के साथ। मुझे पता है संडे है आप कुछ तो हमारे दोस्त संडे में घूमने का प्लान कर रहे हैं अभी इवनिंग में और कुछ बस आराम फरमा रहे हैं कि चलिए आज संडे है, छुट्टी है, आराम कर लेते हैं। और कुछ मेरी तरह ऑफिस में हैं जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो तुसी अकेले नहीं काम कर रहे हो, मैं भी हूँ, ठीक है? तो आप परेशान ना हो, हैप्पी रहें और सुनते रहें एफएम मुरादाबाद 89.6 एंड कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

हाई एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 4:26। दोस्तों, मुरादाबाद में स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की ओर से 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इस साल की थीम है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छता स्वच्छ भारत विकसित भारत। शहर में जागरूकता रैली, सार्वजनिक स्थलों और सरोवरों की सफाई के साथ साथ लोगों को सूखा, गीला और हानिकारक कचरा अलग अलग

अलग रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। और आज यानी 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनअप डे के मौके पर भी सफाई को लेकर विशेष गतिविधियां हो रही हैं। साफ सफाई के इस अभियान में सब अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और दोस्तों, मैं भी आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी कि आप भी कहीं घूमने के लिए जाते हैं या इवनिंग में पार्क में जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं इवनिंग मॉर्निंग में, तो प्लीज आप कुछ खाने पीने की अगर चीजें लेकर जा रहे हैं तो वहाँ जो भी चिप्स का पैकेट हुआ है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं तो बॉटल वहीं पर ना फेंकें, उसको डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। और बस मैं लौटकर अभी आती हूँ, आप कहीं मजाइए, यूं ही मुस्कुराइए, प्यारे प्यारे गानों के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ बने रहिए आप आरजी खुशी के साथ। मैं लौटकर आती हूँ कुछ बेहतरीन ट्रैक के उस पर। यह है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, आज बात उस फिल्म मेकर की हो रही है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि रिश्तों, जज्बातों और इंसानियत संघर्षों को पर्दे पर एक अलग अंदाज में पेश किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट जी की। 20 सितंबर 1948 को जन्मे महेश भट्ट जी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 70s में की। शुरुआती दौर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्थ और सारांश जैसी फिल्मों ने उनके सिनेमा को एक अलग पहचान दी। इसके बाद आशिकी, दिल है के मानता नहीं, सड़क और जख्मी जैसी फिल्मों ने उनकी कहानी कहने की शैली को और मजबूत किया। तो आज उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेरों शुभकामनाओं, और साथ ही याद करते हुए वो खूबसूरत फिल्में जिन्हें कई पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत सा ट्रैक हम सुनते हैं और मैं वापस आती हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए, अपनी संदेश मुझे पहुंचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और खुशी आपसे कहती है बार बार कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है एवरीवन। जब आप स्माइल करते हैं ना, पॉजिटिव स्माइल करते हैं, तो यकीन मानिए एवरीवन, अगर लाइफ में कोई परेशानी भी होती है ना, तो वो भी ना कुछ देर के लिए दूर चली जाती है। और मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को पसंद आता है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको फ्री में स्माइल मिल रही है ना, गॉड गिफ्टेड है। इतना खूबसूरत सा ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है मुस्कुराने का, जिसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, और हमारा चेहरा भी ग्लो करता है। तो मुस्कुराने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, मुस्कुराइएगा।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद

0: बाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: कोई मिल गया,
3: कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी, और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल रहा। एक खूबसूरत इवेंट में जाने का मौका मिला, जहां कई प्यारे और खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन सबसे खास रहा उन प्यारे प्यारी गर्ल्स से मिलना जो मुझे रेडियो पर सुनती हैं। जब कोई लिसनर सामने आकर कहता है ना, मैम हम आपको सुनते हैं, तो सच मानिए एक आरजी के लिए ना उससे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट शायद ही कोई हो। आपकी छोटी सी मुलाकात, आपकी मुस्कान और आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही सुनते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि रेडियो पर आवाज़ हमारी होती है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाते हैं आप, क्योंकि ये दिल से दिल का रिश्ता है। हम यहाँ से बातें करते हैं, आप वहाँ से बैठकर मुस्कुराते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, आप एफएम मुरादाबाद को इतना प्यार देते हैं। आप सभी को आरजी खुशी की ओर से ढेर सारा प्यार। और हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हाय खुशी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रामपुर से, रामपुर तहसील से हमें मैसेज पहुँचाते हैं, बट इन्होंने नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ एड्रेस पहुँचा दिया है। सो आपने नाम लिखना मुझे लगता है जल्दी में भूल गए हैं, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का आया है। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशांत हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, सैयद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी। आदाब खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आपके शो में बिंदास बोल हम आपका सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सॉन्ग भी बहुत अच्छे प्ले कर रहे हैं आप, ये तो आपका प्यार है। तो चलिए विवान सुनते हैं कुछ और अमेजिंग ट्रैक हमारे प्रिटी वुमन के लिए, और क्योंकि वो इतनी मेहनत जो करती हैं सुबह, देखिए सबके लिए संडे होता है फ्री, है ना, लेकिन जो हमारी घर की वुमन होती है ना, जो हमारी घर की सुपर पावर होती है, वो एवरी डे बिजी रहती हैं, उनके लिए कोई संडे मंडे नहीं होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैम के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए सर, एंड एवरी डे वो आपको टी बनाकर देती हैं मॉर्निंग में, तो आज आप भी कुछ अपने हाथों से गर्मा गर्म मैम को बनाकर खिलाइए, कुछ स्पेशल फील कराइए। वो आपका इतना ख्याल रखती हैं, स्पेशली पूरे घर का ख्याल रखती हैं, तो आज की शाम उनके लिए भी कुछ स्पेशल बनाइए, उनको खिलाइए और खुद भी इंजॉय कीजिएगा। चलिए अभी सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं।

अभी आपने सुना एवरीवन ये अमेजिंग ट्रैक करण औजला की ब्यूटीफुल आवाज में। और दोस्तों टीम इंडिया फाइनल में हां जी आई जी नागोया एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, जिसमें शेफाली वर्मा की शानदार नवादी 100 रन की पारी शामिल रही। जवाब में बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। अब टीम इंडिया गोल्ड मेडल मुकाबले में अपना दम दिखाएगी। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। और देखिए दोस्तों भारत की बेटियां पूरे वर्ल्ड में छाई हुई हैं। और जब वो कुछ करने का जुनून होता है ना, तो इंसान हर क्षेत्र में आगे कर अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाता है और हर क्षेत्र में वो अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। तो कहते भी है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। और अगर आपके अंदर भी वो जिद है, वो जुनून है कुछ करने का, तो डेफिनेटली आपकी मंजिल आप ही का इंतजार कर रही है। और फिलहाल मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे रात को 9 बजे। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए एंड इस संडे को स्पेशल बनाइए अपनों के साथ। बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
4: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है मथुरा में गूंजता विकास।
1: तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच। युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवसर से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है। गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इसपे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया है, वो चयन भी एक टीम ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है, कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सेचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह के जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जा करके उन परिवारों से मिल करके उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है। आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का सूत्र है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूँ आपका आरजे जय
0: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे, लेकिन अफसोस कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
3: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
2: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
3: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
2: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे, लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
3: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
2: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
3: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर्स से मैं बोलूंगा।
2: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
3: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
2: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
3: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
3: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं एकदम, आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवाज में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट्स है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
2: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
3: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
2: अच्छा,
3: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
2: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
3: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
2: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
3: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
2: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
3: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
2: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
3: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
2: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
3: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत का वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
2: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
3: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती है जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है, डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
2: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
3: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
2: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
3: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले आना है, बस बात खत्म, तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस की लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
2: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
3: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
2: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
3: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
2: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
3: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है। जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से, कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
2: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार। जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी अदालत जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते तो बता दीजिए और नहीं बताना तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आप कानूनी मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाएं, जो भी है इस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें। और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी है, उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसी टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाल जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सबके बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है।
0: लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय

0: मैं बरौरी अहीर में, जहाँ पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं, तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
1: रवि कुमार।
0: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
1: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवास मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
0: जी।
1: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
0: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
1: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
0: जी,
1: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल
0: अच्छा।
1: योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
0: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से
1: सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
0: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
1: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
0: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
1: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
0: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
1: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अही से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
2: एक परिवार के लिए पक्का घर, मतलब बारिश की चिंता से राहत,
3: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
2: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
3: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
3: बरौली अहीर के गांवों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
2: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
3: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
2: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है,
3: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
2: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
3: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
2: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं, पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
3: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
2: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
3: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
2: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
0: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी है।
0: तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन का कहते हैं, तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं, और बच्चे अपनों खाना पाना देते रहते हैं, तो कचू के तब जाते हैं आते हैं, हारी दुखारी में वही आ जाती है।
0: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे चार पैसे रहते तो आपको अपने बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
4: हाँ वो तो ना बेटा ही तो फिर वही करते है और को खर्च है।
0: हाथ पे पैसे होते तो आप अपना अपनी मन मर्जी से खर्च करती है ना।
4: हाँ फिर तो कर लेते आ जाते हैं। तो
0: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
4: सरकार से ये है कि पैसे भी मिलते जाए अपना खर्चा तो खिलते जाए गरीब आदमी और का है।
2: किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
3: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
2: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
3: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
2: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे।
0: आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
0: तो सर सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
5: मैम जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी रामजी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम
0: जी,
5: और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम, इनके अंतर्गत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है
0: जी। तो सर इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
5: मैम ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें
0: जी,
5: तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफ़ी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है
0: जी। तो सर अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हों।
5: मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम, उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है, अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास दिव्यांग, और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम, और जॉब कार्ड भी है, अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी रामजी योजना में भी काम कर रहे हैं।
0: आज सर अब बात आती है महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं?
5: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबीजी रामजी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबीजी रामजी योजना है बहुत अच्छी योजना है, इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबीजी रामजी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
0: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं ये जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं?
5: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर लें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन, अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कारण से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहें 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल सर, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
5: मैम, विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम, अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है, कहीं भी आती है, तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
5: मैम, संदेश यही है, अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें। अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है कि लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते तो उसके बाद वो जिले से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
2: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है।
3: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
2: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
3: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
2: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
3: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
2: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
3: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
2: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
3: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
2: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
3: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
2: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत थे हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।

0: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
1: Alright.
0: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
1: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
0: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं, जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ गुट्टी पिलाने लगते हैं, कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
1: जी, जी,
0: जी। ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
1: बट
0: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों के उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धोके ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
1: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
0: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: जी हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2 to 3 आवरली, इनिशियली 2 to 3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने हैं, उनको नहीं पता होता है।
1: वो
0: क्या करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है 4 मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम ये कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: Okay.
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है, ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है, वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे
1: जी।
0: फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ 4 मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना, मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है, तुरंत लेटाए ना उसको, अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाए।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है, ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चा तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो कॉमन कॉमन चीजें होती हैं। सबसे पहले
1: कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं, इस वजह से वो रो रहे होते हैं। हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ, तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट, सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है, तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया है। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है। मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो। डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़े पहना रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था, मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ,
0: ठीक है,
1: हाँ,
0: तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है, जिनका जैसे 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चे को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है। तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 kg के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है। ठीक है, उससे कम है अगर, हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है, बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यूबॉर्न प्रीटर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर हैं। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिखते हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें। जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरनमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश जाते जाते
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी,
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है,
1: हाँ जी हाँ,
0: ठीक है, या फिर बच्चे के हथेली या तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीजें देखने को मिलती हैं तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है, तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखना। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए बहुत बहुत थैंक यू, और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे सर।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: भागीदारी पिछले 9 सालों के दौरान 12% से बढ़कर लगभग 37% हो गई है। आगरा, काशी, गोरखपुर और लखनऊ में दुग्ध उत्पादक काम कर रहे हैं, इनमें 4,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
6: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
7: आज मेक इन इंडिया एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरा है। मुझे इस बात का संतोष कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस में यूपी एक मजबूत पिलर के रूप में भी उभर रहा है।
6: काशी के बुनकर और कई पुरस्कारों से सम्मानित मोहम्मद यासीन ने बताया कि मेक इन इंडिया पहल से काशी की हस्तशिल्प और बनारसी साड़ियों को देश विदेश में पहचान और बाजार मिला है।
8: हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को काफी बढ़ावा मिला है। इसकी वजह से बनारस में काफी टूरिस्ट वगैरह भी आ रहे हैं जो यहाँ की बनाई हुई साड़ियाँ और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते हैं।
6: पर्यटन के साथ ही वाराणसी आज बनारसी साड़ियों के जरिए मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बन रही है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मेरठ के मोदिनीपुर न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प का नतीजा है कि भारत रक्षा उत्पादन निर्यात कर रहा है और रक्षा मंत्रालय भी नए और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
9: 10-12 साल पहले रक्षा का एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ था, आज 38,424 करोड़ का एक्सपोर्ट है और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वदेशी आत्मनिर्भर, उस ओर भारत का रक्षा मंत्रालय बढ़ा है और आज जो अद्भुत नजारा होगा तो हजारों हजार युवाओं को प्रेरणा। 2047 विकसित भारत एक ही लक्ष्य है पूरे देश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, वो 100 साल कैसा होगा, वो ताकतवर भारत, वो मजबूत भारत, वो आत्मनिर्भर भारत, वो स्वदेशी से ही, वही प्रेरणा युवाओं में आएगी।
5: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को ही मिले। पेश है एक रिपोर्ट।
10: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पैक्ड खाद्य उत्पादों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत पैक किए जाने वाले खाद्य उत्पादों के पैकेज पर वास्तविक विनिर्माण तिथि दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। पैकिंग की तिथि को विनिर्माण तिथि के स्थान पर अंकित नहीं किया जा सकेगा। यूपीएटीएस ने आज

0: वाराणसी में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के सरगना ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। लगभग 20 वर्षों से फरार चल रहे ब्रजेश गंजू पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। नक्सली ब्रजेश गंजू के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवकों पर हमले समेत 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसमें आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले भी शामिल हैं और उसे 8 साल पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में वांटेड घोषित किया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगामी साक्षात्कार के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग आगामी 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। ये कार्यक्रम कई चरणों में संचालित होगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बारीकियों का अभ्यास कराया जाएगा। प्रदेश के कुछ जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना भी व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 912 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, अगले 6 महीनों में देंगे 1 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी। मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में 2 दिवसीय प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह को किया संबोधित। महिलाओं की गरिमा की रक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मेरठ में भारतीय वायुसेना के एयर शो में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा देश। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर निर्देश जारी। पैक्ड खाद्य पदार्थों पर अब वास्तविक विनिर्माण तिथि अनिवार्य। और वाराणसी में यूपी एटीएस ने 30 लाख के इनामी नक्सली ब्रजेश गंजू को किया ढेर, 20 साल से था फरार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो?
5: लाइन मार रही हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच और जिंदगी में भी दिखाई देता है।
1: और आज का हमारा सफर है पूर्वांचल के उस शहर का जिसकी पहचान साहित्य, संगीत, कला और अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत से है।
0: आजमगढ़ एक ऐसा शहर जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं। यहां के युवाओं ने शिक्षा, कला, साहित्य और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन आज आजमगढ़ की कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता।
1: आजमगढ़, बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने का क्षेत्रीय आवागम और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
0: यानी तस्वीर बदल रही है, रास्ते बेहतर हो रहे हैं और इन्हीं बेहतर रास्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं आजमगढ़ के युवा।
1: क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं चाहता, वह अपना काम शुरू करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहता है।
0: और इसी सोच को ताकत देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यानी CM युवा।
1: जरा सोच, ये पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा के मन में कारोबार शुरू करने का सपना हो, आइडिया हो, मेहनत करने का जज्बा हो, लेकिन शुरुआत करने की पूंजी,
0: यहीं पर कई सपने रुक जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता या सहयोग मिल जाए, मार्गदर्शन मिले और सरकारी सहायता का सहारा मिले तो वही सपना एक उद्यम का रूप ले सकता है।
1: CM युवा का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और उद्यमिक की दिशा में आगे बढ़ाना। योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में परियोजना के लिए लगभग 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत के अनुसार 10% तक का मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।
0: और इसका लक्ष्य भी बड़ा है, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर तैयार करना।
1: यानी संदेश साफ है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने।
0: और आजमगढ़ में इस पहल का असर भी दिखाई दे रहा है। हालिया उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक CM युवा के तहत आजमगढ़ में 5,745 इकाइयों के लिए ऋण वितरण हुआ और जिला इस मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है।
1: वाह, यानी आजमगढ़ में सपने देखे नहीं जा रहे, उन्हें कारोबार की शक्ल भी दी जा रही है।
0: अब मिलते हैं हमारे पहले लाभार्थी से। ये उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके मन में भी एक सपना था, अपना खुद का कारोबार शुरू करने का।
1: सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत के लिए आर्थिक चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी, फिर CM युवा योजना ने इन्हें आगे बढ़ाने का रास्ता दिया।
0: आज इस काम को लेकर उन्होंने कभी सिर्फ कल्पना की थी ना, उसे हकीकत में बदलने की दिशा में वो कदम बढ़ा चुके हैं।
1: आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, सपना क्या था, शुरुआत में क्या मुश्किलें थी और CM युवा से मिली मदद किस तरह इन्हें उड़ान भरने में सहयोग दी।
2: नमस्ते, मेरा नाम राजनाथ चौहान है, मैं ग्राम फजुल्लापुर पोस्ट अंबरपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट जो कि एजुकेशन साइंस से है और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमें सोशल मीडिया के जरिए एक योजना के बारे में पता लगा जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का है, जिसके जरिए हमें पता लगा कि इसके वजह से हमें 5 लाख का लोन मिलेगा जिसमें 10% हमारी मूल मार्जिन मनी रहेगी जो कि हमें सब्सिडी के तौर पे वापस हो जाएगी। तो हम जब ये योजना के बारे में सुने तो हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, जिसके वजह से हम काफी उत्सुक हुए और हम अपने नजदीकी उद्योग विकास ऑफिस पे गए और वहां से जानकारी लिए। वो हमें बहुत अच्छी से इसके बारे में समझाया और आज हम इस योजना का लाभ लेते हुए 2 महीने सिर्फ हुए हैं और आज हम अपनी दुकान जिसका नाम राज हाईटेक कार वॉशिंग सेंटर है, मुबारक जो कि मुबारकपुर में संचालित कर रहे हैं हम, और आज हम इस योजना से बहुत बहुत खुश हैं। और हम अपने युवाओं को बस एक ही बात कहना चाहते हैं, सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेना चाहिए और बहुत अच्छी योजना है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कहते हैं पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई हमें अपने सपनों को दिशा देने का हौसला भी देती है।
1: हमारे दूसरे लाभार्थी भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद इनके मन में भी एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपना व्यवसाय खड़ा करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है।
0: लेकिन किसी भी नए कारोबार की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है शुरुआती पूंजी और सही वित्तीय सहयोग।
1: सीएम युवा के जरिए मिली सहायता ने इनके लिए शुरुआती चुनौती को पार करने के लिए जो रास्ता था उसे आसान किया। आज उनका सपना सिर्फ सपना नहीं रहा बल्कि वास्तविक व्यवसाय की दिशा में एक कदम बन चुका है।
0: यही तो इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। जब युवा के पास शिक्षा, हुनर और सपना हो और उसे सही सहयोग मिले तो वो खुद अपने भविष्य की कहानी लिख सकता है।
1: आइए सुनते हैं हमारे लाभार्थी से कि उनके लिए अपने व्यवसाय की शुरुआत का ये सफर कैसा रहा।
3: मेरा नाम अवनीश कुमार राव है। मैं रहने वाला जिला आजमगढ़ से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव बलरामपुर में पड़ेगा। मेरी पढ़ाई एम एड हुआ है और गवर्नमेंट आई टी आई हुआ है। मुझे बिजनेस खुद का अपना करना था जो कि सोशल मीडिया से मुझे पता चला। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आज 5 लाख का प्रोवाइड ये लोन हुआ। काफ़ी मैं इस योजना का लाभ उठाया 5 लाख लोन का। आज मेरा एक शॉप चल रहा है 1 साल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद कहता हूँ और बाकी माननीय योगी आदित्यनाथ जी सर का।
0: तो दोस्तों, आजमगढ़ की कहानी सिर्फ विकास की कहानी नहीं सपनों को अवसर मिलने की भी कहानी है।
1: एक तरफ बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर आजमगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम युवा जैसी पहल युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दे रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलों को फोकस यही है कि प्रदेश का युवा अपनी क्षमता को पहचान कर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े।
1: और आजमगढ़ के इन दोनों युवा उद्यमी की कहानी बताती है कि जब शिक्षा, सपने, मेहनत और अवसर एक साथ आते हैं तो बदलाव जरूर लाते हैं।
0: क्योंकि असली विकास वही है जो रास्ते भी बनाए और उन रास्तों पर चलने का हौसला भी दे।
1: और आजमगढ़ के युवा कह रहे हैं, सपना अपना है, मेहनत अपनी है और अब उड़ान भी अपनी है।
0: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे टिया।
1: और मैं हूँ आरजे दीप।
0: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ में सपनों की उड़ान। फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश की एक और विकास गाथा के साथ।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: लिमिटेड बर्लिन में इनो ट्रांस 2026 में भाग लेगी, वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कैंसर देखभाल में नवाचार और किफायती उपचार विषय पर सेमिनार को संबोधित किया और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में कृषि जल संरक्षण इकाइयां स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
3: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और दिल्ली नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल केवल भवन नहीं बल्कि दिल्ली के समृद्ध इतिहास और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर देश दुनिया से दिल्ली आने वाले पर्यटकों को पुरानी दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐतिहासिक टाउन हॉल, प्रेस बिल्डिंग और पार्क का संरक्षण करते हुए एक ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक भवन की मूल विरासत पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसका अनुकूली पुनः उपयोग करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
2: दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
6: इनोट्रांस 2026 जर्मनी के बर्लिन में हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला और रेल परिवहन उद्योग पर आधारित केंद्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर ने कहा कि इनोट्रांस 2026 DMRC और DMIL की विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दुनिया भर के परिवहन अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और मोबिलिटी लीडर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। DMIL ने पिछले 3 महीनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जमा की हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की एक अहम शुरुआत है। इनोट्रांस 2026 संस्करण उन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा जो रेल परिवहन को बदल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित कैंसर देखभाल में नवाचार और इलाज को किफायती बनाने से जुड़े विशेष सेमिनार को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और किफायतीपन का साथ साथ चलना जरूरी है। उन्होंने कैंसर की रोकथाम, जागरूकता, शुरूआती जांच और समय पर रेफरल को प्रभावी कैंसर देखभाल की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी की शुरुआती पहचान से जान बचाने के साथ परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से भी राहत मिलती है।
7: फॉर अ पेशेंट एंड देयर फैमिली, किसी मरीज और उसके परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल एक चिकित्सकीय चुनौती नहीं है बल्कि यह भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और भारी आर्थिक बोझ भी लेकर आता है। इसीलिए वहनीयता को नवाचार से अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाना।
2: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने मरीजों को 35 वर्षों तक सहानुभूतिपूर्ण सहयोग देने के लिए कैंसर सहयोग की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नायर सर्विस सोसाइटी और ग्लोबल नायर सेवा समाज द्वारा आयोजित नायर शिखर सम्मेलन 2026 और विद्याधिराजा महोत्सव समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संत और समाज सुधारक चट्टम्पी स्वामीकल ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत रूढ़ियों के विरूद्ध समाज को जागरूक कर समानता और समरसता का संदेश दिया। ये आयोजन उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी भावना के साथ दिल्ली में रह रहे केरलम के सभी भाई बहन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए दिल्ली की विविधता को समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हरितालिका तीज महोत्सव 2026 में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये तीज व्रत नहीं बल्कि नारी के संकल्प और शक्ति की गाथा है। माता पार्वती के तप और संकल्प से जुड़ा ये पर्व आज भी सभी माताओं और बहनों की आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हरितालिका तीज को नेपाली और गोरखाली नारी की शक्ति और स्वाभिमान का पर्व बताते हुए समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सफर का जश्न मनाना उनके लिए खुशी का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
2: राजधानी में विभिन्न रामलीला समितियों ने आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया। आज ऐतिहासिक लवकुश रामलीला समिति ने लाल किले के सामने लवकुश पार्क में भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भगवान श्रीराम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान ध्वज को भूमि में स्थापित कर दिल्ली के रामलीला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उत्सव है।
8: प्रभु राम की जो मर्यादा है, उनके जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित होते रहे और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के गुण गाते रहे। रामलीला हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और आज से विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
2: श्री खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की रामलीलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक है जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास बिधूड़ी तथा मंजू भी उपस्थित रहीं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन कार्यों पर खर्च की जा रही राशि दिल्ली सरकार के अनुसूचित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम MCD ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाए। पुरानी दिल्ली में विकसित फाउंडेशन के सहयोग से लाल किला और अंगूरी बाग क्षेत्र में आयोजित अभियान में करीब 400 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंगूरी बाग में पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग और उत्तरी क्षेत्र के तिमारपुर, गांधी विहार, वजीराबाद और GTB नगर में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान नागरिकों को कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
10: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
9: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
10: वो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
11: कॉल 7500153841।
12: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
13: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
12: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

लबो और खसार की बातें चलेंगी, खुशी की रार की बातें चलेंगी, फकीरों का यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ जरदार की बातें चलेंगी। ये मौका महफिल शेर व सुखन है, ये मौका महफिल शेर व सुखन है, यहाँ अशार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी,

0: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की शाम हमने फिर से किसी एक खास मेहमान को बुलाया है। ऑफ कोर्स इनकी आवाज से आप रूबरू हो चुके हैं एक बार। अगर आपने आज रेडियो ट्यूनिंग किया है तो कोई बात नहीं, आज फिर से हम आपसे उनको मुखातिब करवा देंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं बल्कि दो दो महान लोग मौजूद हैं। एक तरफ राशिद भाई हैं और दूसरी तरफ मनु भाई हैं, और इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद की स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
1: धन्यवाद आनंद भाई,
0: थैंक यू सो मच जी। मनु जी नमस्कार, आप कैसे हैं सर?
2: बहुत अच्छा हूँ मैं,
0: आते जाते तो बहुत मिलते हैं आपसे, लेकिन
2: आपसे मिलकर तो एक अलग वाइब आती है।
0: अरे
2: तो
0: क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छी वाइब आती है, इसलिए तो हम आपको लगे हाथ बुला लेते हैं। खैर आज तो काफी एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है मेरी आपकी।
2: हाँ बिल्कुल,
0: है ना। लेकिन हमारे जो श्रोता है ना, उनको आप ज्यादा लंबे अंतराल पे सुनाई नहीं देते क्योंकि आपके बीच बीच में सेशन आते रहते हैं, तो वो जहन में रहता है फिर। अच्छा ये मनु भाई है, चलिए राशिद भाई पहली बार आए हैं तो जरा उनसे कुछ वार्तालाप करता हूँ जी। राशिद भाई आज आप सेकेंड टाइम आए हैं, इनफैक्ट
1: जी जी
0: मैं भूल गया, तो आप बताइए सर कैसे हाल चाल है, कैसे मिजाज है?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, हैंडसम हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आप देख ही रहे हैं, आपके जी सामने चकाचौंध में बैठे हैं लाइटिंग में
1: जी जी।
0: तो बताइए सर आज आप हमारे मुरादाबादी को क्या स्पेशल सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे जानने वालों को
1: जी। देखिए मेरा नाम राशिद सैफी है और मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ, छोटा सा लिखने वाला हूँ, और मैं राशिद मुरादाबादी के नाम से अपनी कविताएं और गजलें लिखता हूँ। और मुरादाबाद के ही अंदर जहाँ कहीं भी मुझे मंच पर थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो मैं अपनी कविताएं वहाँ पेश करता हूँ। और
2: ऐसी बात नहीं है रजित भाई, हम आपको जानते हैं, जितना आपने

0: कि हमें अपने आप को कम ही
1: आंकना चाहिए,
0: आंक कर दूसरों को बताना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये और मैं वो, ये मैं वाली जो वो है स्थिति, ये नहीं आनी चाहिए। खासतौर से एक कलमकार जो साहित्यकार होता है वो कभी मैं में नहीं रहता है।
1: क्या बात है, साहित्य की दुनिया से निकल के आज रेडियो की दुनिया में पहुंचे हैं जनाब। तो
0: जी।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में हमारे स्टूडियो में आपका।
0: शुक्रिया।
1: और आज तशरीफ लेकर राशिद भसाद मनु जी भी आए हैं, तो उनसे भी कुछ ना कुछ सुनेंगे हम हमारे स्टूडियो में। ये जो उर्दू थोड़ी बहुत मैंने सीखी है वो ऐसे लोगों से सीखी है, और शायद मेरी भी जो है अब लैंग्वेज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी और उसमें तब्दीली होगी जरूर, बहुत जरूरी है एक अनाउंसर के लिए।
0: तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे
1: नहीं। ये तो आप बता सकते हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनते हैं ना।
1: अरे
0: हम आपको आप आज दूसरी बार मिलने का सौभाग्य
1: सर हमें
0: मिल रहा है, हमें
1: मिल रहा है बिल्कुल।
0: लेकिन हम अक्सर एफएम मुरादाबाद पर आपको सुनते हैं, और सुनने के बाद में मतलब एक बड़ा एक आनंद सा आता है, जैसे कि आपका नाम है
1: शायद यही सोच के माँ बाप ने नाम रखा होगा कि मैं कुछ तो आनंदित करूंगा।
0: बिल्कुल,
1: वो कहते हैं ना कभी कभी आपका नाम आपको वो करने पे मजबूर कर देते हैं सोचते भी नहीं हो।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी को ले लो
2: नाम का बहुत बड़ा।
0: मुरादाबाद के लाखों लोग आपको सुन के आनंद होते हैं, मैं ऐसा मेरा सोचना है।
1: चलिए सर, मैंने इस बात की आपको खैर पैसे नहीं दिए थे, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। आज मनु जी किसी हीरो को पकड़ के ले आए हैं दोबारा, ऐसा लग रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है एक कलाकार को तारीफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर वो कुछ अच्छी चीज कर रहा है और उसमें उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या हौसला अफजाई उसे मिल जाता है तो उसे और काम करने का पोटेंशियल उसका बढ़ जाता है।
2: ये जो चीज होती है
1: जी,
2: ये उसके लिए कैटलिसिस का उत्प्रेरक का काम करती है। और भी और श्रोताओं को इस चीज का आनंद ये मिलता है कि और कुछ अच्छा जो बोलने की कहने की पढ़ने की प्रेरणा एक साहित्यकार को एक कवि को एक शायर को मिलती है।
1: बिल्कुल,
2: तो उसका फायदा हमारे श्रोतागण
1: कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड ही हूँ, है ना। आप साहित्यकार की दुनिया में हैं, हम आवाजों की दुनिया में, तो कहीं ना कहीं है एक दूसरे के साथ
2: आवाज से सिलसिला है।
1: एग्जैक्टली, अब लोग हमें सुनकर ही अपने मन में एक छवि बनाते हैं।
0: जी जी,
1: राइट। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो राशिद जी को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज से एक इमेज बनाएंगे, तो ये एक पावर है रेडियो की।
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो राशिद भाई आज आप आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतरीन आज सुनाएंगे मुरादाबादी को, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अच्छा गीत सुना देते हैं।
0: जी जी।
1: तो अगर कुछ आप अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहे, कोई गीत आज सुनवाना चाहिए, मौका मैं आपको दूं, और अपनी आवाजों में उसे गुनगुनाना चाहे, तो कौन सा गीत होगा जो आप चाहेंगे कि लिसनर को सुनाएं हम?
0: देखिए, मैं जो आज आपको सुनाऊंगा अपनी जो लिखी हुई एक कविता है वो तो माँ के ऊपर है।
1: ओके, लेकिन अभी हम लिसनर को कोई गाना सुनाना चाहते हैं,
0: तो आप माँ के ऊपर ही कोई गाना अगर चाहे तो सुना सकते हैं,
1: जैसा आपको बेहतर लगे। कौन सा गाना है जो आपके
0: लिसनर को जो है, माँ तो हर किसी को प्यारी होती है।
1: exactly.
0: माँ तो हमारी माँ होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो माँ के लिए कोई भी गाना एक
1: जो आपके जहन में आ रहा है, मैं तो वही चलाऊंगा।
2: हमारा आग्रह ये है राशिद भाई कि
1: आप
2: दो पंक्तियाँ उसकी गुनगुनाते हुए करिए, ताकि गीत का आगाज हो सके और प्रोग्राम का भी।
1: मेरे जहन में तो एक ही कह रहा है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है।
0: हाँ, वो तो सदाबहार गाना है,
1: सदाबहार
0: वही प्ले कर दीजिए,
1: बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे कैसे प्ले कर देंगे, हम तो आपसे सुनेंगे ना, हम तो तभी आगे बढ़ेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, दो लाइनें।
1: हाँ,
0: तू कितनी

क्या बात है। चलिए, ये नहीं पता था इतना इनके अंदर खजाना है। सिर्फ ये साहित्यकार की दुनिया में नहीं, मुझे लगता है सिंगिंग की दुनिया में भी कुछ करते हैं। वो तो अभी आके पता चलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: बहुत खूबसूरत ट्रैक, और सच बताऊं तो ये गाना सुन के गूज़बम्प्स आने लगते हैं। और ये कुछ वो गाने हैं जिनको आप जितनी बार भी सुन लो ना, आपका मन नहीं भरता, ऐसा लगता है दोबारा सुने। क्यों मनु जी, राशिद जी, है ना? और ये गाने नहीं है एक्चुअली में सच्चाई है जो हमें दुनिया के सामने वाकिफ कराती है, दुनिया में हमारे लिए माँ कितनी इंपॉर्टेंट है गानों के जरिए। तो मनु जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। राशिद भाई से तो लगातार बातें चल ही रही है, आप भी हमारे बीच में शामिल है, तो हम आपको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? आप कुछ कहिए अपने बारे में, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
1: कहना क्या है, मैं तो बस पब्लिक श्रोतागण आप सभी महसूस करते हैं, मैं बार बार अपना क्या
0: आवाज में इतनी क्वालिटी है, इतना बेस है, इतना यू नो एनर्जी है।
1: मैंने क्या बताया, ये आपकी मोहब्बत है और ये
0: मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत तो अलग है ही,
1: जो प्यार है
0: और राज तो नहीं है, कुछ स्पेशल तो नहीं खाते।
1: ये जो श्रोताओं का प्यार है यही इस चीज को इनहेंस करता है।
0: क्या बात है।
1: तो मैं एक मुकम्मल आगाज के साथ, दो चार मिस्रों के साथ आगाज कर दूं।
0: बिल्कुल जी, इरशाद इरशाद
1: कहता हूँ
0: जी जी।
1: लबो रुखसार की बातें चलेंगी, खुशी की रार की बातें चलेंगी,
0: वाजी वाह,
1: फकीरों का यहाँ पर जिक्र होगा, यहाँ जरदार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
1: ये मौका महफिले शेर व सुखन है, ये मौका महफिले शेर व सुखन है।
0: क्या बात है,
1: यहाँ अशार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी, अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
1: अदब की हस्तियों के दरमियाँ हैं बड़े मयार की बातें चलेंगी, जरा सी फिक्र की बातें करेंगे, फलक संसार की बातें चलेंगी, और सरापा हुस्न में डूबेंगे जमकर सनम इजहार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात,
1: बशर्ते रूठ भी जाए अगर वो, तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी,
0: मनुहार
1: तो फिर मनुहार की बातें चलेंगी, गमों की खार की बातें चलेंगी, यहाँ अशार की बातें चलेंगी।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने जो ये पंक्तियां रखी, बहुत मजेदार थी। लेकिन जो भी बोलो, मुझे तो सुन के मजा आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा कि मैं भी साहित्यकार न बन जाऊं आरजे से। खैर, वो तो इस जन्म में नहीं हो सकता है। राशिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी जी, देखिए बहुत ही अच्छी नज़्म सुनाई है हमारे मनोज भाई ने, और आपने सही कहा, इनकी आवाज में एक वजन है और एक लगाव है, एक आकर्षण है जो अपनी ओर आकर्षित करती है आवाज।
1: मोहब्बत की मोहब्बत,
2: जी जी, तो नहीं नहीं ये सच है। तो मैं भी मनोज,
0: मैं काफी बार नोटिस कर चुका हूँ, नहीं नहीं मेरे स्टूडियो में बहुत बार आ चुके हैं, इसीलिए क्योंकि हम भी आवाजों की दुनिया में रहते हैं, तो इतना तो पता लग जाता है।
2: बिल्कुल,
0: है ना, तो वो चीज है, और जो जब लगे वो कह देना चाहिए।
2: जी जी,
0: है ना,
2: और कहीं ना कहीं आपकी आवाज में बहुत मिठास है मनोज भाई की, जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ।
0: क्या बात है, मुतासिर, मुझे एक नया शब्द सीखने को मिल गया।
1: बिल्कुल, आप सुनेंगे,
0: मुझे आप लोग क्लास दो यार उर्दू की, मुझे जरूरत है,
1: सीखते चले जाएंगे, साथ कारवा चलता रहेगा।
0: मुतासिर का मतलब तो बता दीजिए, लाइव ऑन एयर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें भी पता चल जाएगा।
2: प्रभावित हूँ,
0: प्रभावित,
2: जी जी,
0: उसको उर्दू में कहते हैं मुतासिर,
2: प्रभावित,
1: प्रभावित
2: और मुतासिर उर्दू में,
0: उर्दू में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, चलिए एक जिंदगी में एक नया शब्द सीखा,
1: भाषाओं का संगम यही तो है।
0: एग्जैक्टली, चलिए बहुत बढ़िया जी। राशिद जी, स्वागत है आपका, बताइए।
2: हाँ देखिए, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता जो माँ के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी पहले,
0: हमने गाना भी सुना माँ के
2: गाने से पहले जो है मैंने कहा था, तो वो मैं रखना चाह रहा हूँ
0: प्लीज,
2: और सभी हमारे श्रोताओं को, मुरादाबाद के श्रोताओं को, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है, यानी ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा एहसास है कि हर किसी को माँ शब्द से ही प्रेम है। माँ तो बहुत दूर, वो तो उनसे तो है ही है, लेकिन माँ का शब्द जहाँ लिखा होता है बस उसी से प्रेम है।
0: क्या बात,
2: और माँ के लिए जितने भी शब्द लिखे जाए वो कम है, पूरी दुनिया में जितने भी शब्द माँ की, माँ के समर्पण के लिए, माँ के प्यार के लिए, माँ के प्रेम के लिए लिखे जाते हैं, माँ के त्याग के लिए, वो सारे कम है। मैं समझता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ,
0: क्या बात,
2: ममता और प्यार ऐसा दिखाती है माँ, तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ।
0: क्या बात,
2: तड़प के बच्चों को सीने से लगाती है माँ, और सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, सोती है खुद कांटों भरी सेज पर मगर, मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ।
0: क्या बात है,
2: मखमल के बिस्तर पे हमें सुलाती है माँ,
1: सुलाती है माँ,
2: और जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में,
0: क्या
2: विपत्तियां, परेशानियां जो जीवन की, जिंदगी की आती है हमारे सामने, कि जीवन की विपत्तियों की कड़ी धूप में संतोष का ठंडा साया बनकर बन जाती है माँ।
0: क्या बात है,
2: संतोष का ठंडा साया बन जाती है माँ, और बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही, बताकर अच्छे बुरे का फर्क बचपन से ही दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ।
0: क्या बात है,
2: दुनिया में जीना हमको सिखाती है माँ। बचपन से ही माँ जो है बताती है बेटा देखो ये करते हैं, ये ऐसे ये नहीं करते, ये गलत बात है, सब जानती बात है, सब
1: प्रथम गुरु है।
2: हाँ बिल्कुल, तो बचपन से ही हमें जो है हर चीज की अच्छाई बुराई माँ समझाती है।
0: बहुत बेहतरीन।
2: तो अगला मैं रखता हूँ आपके सामने
0: जी।
2: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर,
0: क्या बात है,
2: आती है जब मुश्किलें उसके बच्चों पर चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
0: क्या बात है,
2: चट्टान सी सामने खड़ी हो जाती है माँ।
1: ईश्वर ने ये सामर्थ्य माँ को दी है,
0: सच बात,
2: बिल्कुल हकीकत है। और पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, पालती है 9 महीने अपनी कोख में हमें, तभी तो भगवान का रूप कहलाती है माँ।
0: क्या बात है,
2: तभी तो भगवान का रूप कहलाता है माँ। और ये अंतिम है जो बड़ा थोड़ा दुख भरा है, दर्द भरा है
0: जी,
2: ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उनके लिए है जिनके जीवन में इस चीज की कमी है, यानी के और माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, माँ की कमी का दुख पूछे कोई उनसे, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ, जिनकी दुनिया से जल्दी चली जाती है माँ। ये कमी तो खैर उन्हीं लोगों से पूछी जा सकती है जिनकी जीवन में माँ
1: बहुत बड़ी बात है वास्तव में। और आपने जो है एक अलग तरफ मोड़ दी है दिशा,
0: सच में
1: हमारे श्रोतागण ये बात महसूस कर रहे होंगे। और वाकई जो आपने एक सब्जेक्ट लिया माँ, ये दूसरी चीज ये कि जो शब्दावली आपकी वो कितनी सदीवी, कितनी अच्छी, हिंदी उर्दू दोनों का संगम, और वो एहसास जो आप बताना चाह रहे थे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं तक बिल्कुल पहुंच रहे होंगे।
0: बिल्कुल, उसके जो भाव थे उसमें जो एक मतलब खुशी भी थी, तकलीफ भी थी, दोनों चीजें आपने बयां कर दी और लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि वही बात के जो महफिल है, मैं कहना चाहूंगा कि ये रूहानी हो गई है।
0: क्या बात है
1: कि नहीं
0: है, वही चीज
1: रूह से रूह तक जाती है तो फिर वास्तव में बात रूहानी हो ही जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो आनंद जी, मैं जैसे कि अभी भैया ने माँ के बारे में बातचीत की
0: जी,
1: तो मैं कहता हूँ कि माँ पिता ये वो अनमोल रुतवा है, ठीक है ना, जिसका दर्जा ईश्वर के समतुल्य बल्कि उससे भी ऊपर पहुँच जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो जब जिक्र माँ का हुआ है तो मैं एक रचना के एक दो बंद
2: बिल्कुल
1: जो पिता को समर्पित है, मैं इसे कहकर के राशिद भाई बात को
2: जी
1: एक समानता के बीच लाने की कोशिश करता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आप तो ऐसे देखें कि छिपा पता क्यों पिता में, अगर मात्रा हटा दें तो पता हो जाता है, सब पिता है।
2: बिल्कुल।
1: छिपा पता क्यों पिता में हुआ कभी ये भान,
0: सही बात,
1: छिपा पता क्यों पिता में हुआ कभी ये भान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, उनसे ही अस्तित्व है, उनसे ही पहचान, सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर,
2: क्या कहें,
1: सर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर। पद क्या क्या कहते हैं पिता के बारे में
0: जी।

0: पर
1: क्या बात?
0: सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर,
1: बहुत हो
0: सिर पर छांव पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर। और इस अंतरे में माता और पिता दोनों के साथ
1: दोनों का समावेश
0: चलते हैं।
1: क्या बात है?

0: सिर पर छाओ पिता की,
1: क्या बात
0: कच्ची
1: है।
0: दीवारों पे छप्पर, सिर पर छाओ पिता की, कच्ची दीवारों पे छप्पर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
2: बहुत खूबसूरत। तो, मनु जी आनंद आ गया। बहुत खूबसूरत जो है, आपने एक नई तरफ जो है चीजों को मोड़ दिया आपने, बहुत बेहतरीन।
0: नहीं, मुझे महसूस हुआ कि माँ जैसी अजीम शख्सियत के साथ, पिता जैसे अंबर का जो आशीर्वाद है वो जब पहुंचे, तो ये जो हमारा सुनना है, हमारा पढ़ना है, ये सब सार्थक हो जाए और एक सकारात्मक संदेश हमारे श्रोताओं को भी मिले, जिससे कि आनंद के साथ साथ एक जो मैसेज है, हालांकि ये कवि धर्म है कि कोई भी बात है, अगर कोई भी रचना है हमारी, तो वो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे उसके सकारात्मक प्रभावों में वृद्धि हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये खुदा को पसंद है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बहुत बढ़िया मनु जी, बहुत आनंद आया इसी बात पे। एक बहुत ही बढ़िया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: गाना मैं पिता के लिए प्ले करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी फिल्म थी आमिर खान साहब की, कयामत से कयामत तक, उसमें गाना है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो यही गाना, अब भाई इतनी सारी बातें हो रही है, मदर के ऊपर हमने सुना, अब हम फादर के ऊपर सुन रहे हैं, तो प्रोग्राम में चार चांद लग गए। इस गाने के बाद हम आएंगे और फिर अपने साथियों से इजाजत लेंगे। श्रोताओं, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। यह पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रूपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रूपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
6: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
5: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
7: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह उन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
8: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: दोस्तों रात ने उड़ी है चांदनी की चादर, हवाओं में घुली है संगीत की खुशबू और अब इस खूबसूरत रात को और भी हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं आपके पसंदीदा नगमों के साथ। हम क्योंकि हर गीत में छुपी कहानी है और आज की हर कहानी होगी आपके नाम। एवरीवन, रात के 9:05 हो गए स्टूडियो की घड़ी में। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है गीत आपके नाम से, जहां हर गीत है किसी खास के नाम और शायद आज वो खास आप भी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ना अपने शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने फर्स्ट लिस्टनर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं आज की शाम। वैसे दोस्तों बाहर का मौसम बहुत ही औसम है, आसमान में आपने देखा है चांद का दीदार किया है आपने, इतना ब्यूटीफुल चांद है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। अगर अभी आपने चांद का दीदार नहीं किया है तो देख लीजिए। माना आप किचन में बिजी हैं लेकिन थोड़ा सा अगर किचन से फ्री हो जाए ना मैम तो जरूर बाहर देखिएगा। हेलो।
1: हाँ मैम जी।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी आप ऑनियर हैं।
1: सबसे पहले खुशी जी मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, आप बताइएगा अपना नाम।
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत आप से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा कैसे हैं इशरत जी आप?
1: मैम बहुत अच्छे, आपका इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से, बार बार घड़ी की तरफ को देख रहे थे मैम।
0: अच्छा ओके, तो फाइनली इंतजार कम्प्लीट हो गया।
1: हमारी आदत सी बन गई है आपको सुनने की, कॉल लगाने की।
0: ये तो है, हम मान सकते हैं आपकी बातों को।
1: मैम ये आदत खराब नहीं है, काफी अच्छी आदत है।
0: हमने कब कहा ये आदत खराब है?
1: हमारा कोई काम भी खराब नहीं होता और जो हमें टेंशन होती है दूर हो जाती है मैम आपसे बात करके।
0: हाँ जी हाँ जी, ये रेडियो का रिश्ता ऐसा ही होता है, खूबसूरत सा काम में भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, इनमें इवन इसके बेनिफिट्स ही हैं एंड जब इसको सुनते हैं तो हैप्पीनेस मिलती है।
1: ऐसा मैम ये रिश्ता सबसे खास है।
0: हाँ जी एग्जैक्टली राइट। बहुत प्यारा मौसम है बाहर, आसमान में एकदम चांद क्लियर दिख रहा है, दीदार हो रहा है चांद का और हल्की हवाएं भी चल रही हैं। हाँ जी हाँ जी, अब गर्मी से सर्दी की तरफ रुक कर रहा है मौसम, करवट बदल रहा है, तो इस मौसम में अपना भी विशेष ख्याल रखिएगा आप, ठीक है?
1: बिल्कुल मैम, जैसे ये रात को सोते हैं बाहर तो मच्छर के ऊपर कोई कपड़ा डाल के सोए ना।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी मौसम ऐसा ही है। बाकी आप बताइएगा इशरत जी, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम आज एक मूवी का नाम है राम अवतार।
0: हाँ जी
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, निगोड़े मर्दों का कहाँ दिल भरता है, आज के सॉन्ग में याला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नमस्कार आपको भी। तो एवरीवन ये ना मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से हमें कॉल कर सकते हैं और ऑन ईयर आपकी वॉइस भी, जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना सर की आवाज़, वैसे आपकी आवाज़ भी सुनने का मौका मिलेगा और श्रोताओं को। तो बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइए आप, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है। जी हाँ, जब खुशी आती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि आपको ढेर सारी खुशियां दे। और अभी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कनेक्ट हुई है राइट हियर, एंड उनसे बातचीत करते हैं और बनाते हैं उनकी शाम को भी अमेजिंग। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: कैसी हो मैम?
0: मैं तो ठीक हूँ। दरक्षा फातिमा जी बात कर रही हैं। ओके,
1: कैसी हो मैम?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आपके हाथों में कोई जादू वादू है? हाँ, फटाक से कॉल लगा देते हो आप।
1: हाँ मैम, मेरे हाथों में जादू है, मैं एकदम से कॉल लगा देती हूँ।
0: अच्छा, ये कौन सा जादू है जरा हमारे श्रोताओं को भी बताओ, और भी हमें बहुत सारे लिसनर सुन रहे हैं राइट नाउ, तो वो भी बहुत कोशिश करते हैं बट उनका कॉल नहीं लग पाता है, तो ऐसा क्या जादू आप करते हैं?
1: जादू ये है,
0: हाँ,
1: जैसे कॉल आप काटती हो ना,
0: हाँ,
1: फौरन कॉल लगा देना है, बस कॉल लग गई।
0: अच्छा, तो एवरीवन सुन रहे हैं ना, जैसे आपको अभी बताया है दरक्षा ने, आपको क्या करना है, जैसे ही इधर फोन डिस्कनेक्ट होता है आप उधर से कॉल लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका इमिडिएटली कॉल लग जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करिएगा, ये नहीं है कि आपने एक बार लगाया और ओहो हो यार नंबर तो बिजी आ रहा है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो अब इनसे बातचीत कर लेते हैं और बताइएगा रियर कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप सबसे प्यारी प्यारी लिसनर से जब बातचीत हो जाती है तो और अच्छे हो जाते हैं। बताइएगा आप क्या कर रहे हो अभी?
1: मैम मैं इस टाइम आपका इंतजार कर रही थी।
0: अच्छा,
1: और बैठे हुए सुन रही थी आपको।
0: ओह, मेरा इंतजार कर रहे थे आप?
1: हाँ मैम, नमस्ते है ना, वैसे ही आपका इंतजार शुरू हो जाता है।
0: हाय रब्बा, सच में घड़ी को देखते रहते हैं आप, भूलते तो नहीं है कि?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भूलते हैं मैम, फोन हाथ में रहता है कि कितना टाइम हो गया इस टाइम।
0: ओह, एक बार को खाना खाना भूल सकती है मोहतरमा, लेकिन हमें याद करना नहीं भूलती है।
1: हाँ मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, आपका शो सुनती हूँ।
0: अरे अरे, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हाँ मैम, 10 बजे खाना खाती हूँ मैं, कभी कभी होता है ऐसे।
0: अच्छा ठीक है, जब साथ मिलेंगे ना हम लोग कभी मिलेंगे तो हमारे साथ खाना खाइएगा। ओके,
1: हाँ मैम इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे।
0: या डेफिनेटली, बताइएगा अभी क्या सुनोगे आप?
1: मैम मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ अपनी बेस्टी रुपया फातिमा के लिए।
0: हाँ जी,
1: सॉन्ग है तुझे रब ने बनाया किस लिए।
0: ओह, ये तो बहुत प्यारा गाना है।
1: हाँ मैम बहुत अच्छा है।
0: तो चलिए आज की शाम सुनवाते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ भी। ठीक है
1: मैम, शायरी?
0: हाँ शायरी भी सुनाइए। अरे वो तो हम भूल ही गए थे, सुनाइए सुनाइए।
1: वाले मरते नहीं मारे जाते हैं,
0: इश्क वाले मरते नहीं मारे जाते हैं। वाह वाह,
1: इश्क वाले मरते नहीं मारे जाते हैं, कोई कहता है जला दो इन्हें, कोई कहता है दफना दो इन्हें, पर ये कोई नहीं कहता कि मिला दो इन्हें।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं आपकी।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।
1: सुननी हो ना तो वो भी कॉल कर ले।
0: अच्छा जी ठीक है, वो कॉल कर लेंगी आपको। चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप कहीं मत जाइए। अगर ऑन द वे कार में है तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और ये प्यारे प्यारे गानों का आनंद लीजिए।

0: फॉर मोर एंड
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड।

0: मुरादाबाद कॉल 7500153841।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है। जी हाँ, और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 9:26। शो का नाम आपको बता देती हूँ, गीत आपके नाम से। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अभी उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, योर गुड नेम?
1: माय गुड नेम इज मुस्तफा रजा।
0: मुस्तफा रजा जी, बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? योर गुड नेम?
0: माय नेम इज खुशी।
1: ओह
0: या,
1: यू हैव अ वेरी नाइस नेम।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड यू फ्रॉम?
1: हेलो,
0: वेयर आर यू फ्रॉम राइट नाउ?
1: आई एम फ्रॉम बरेली।
0: बरेली? ओह नाइस सिटी, बरेली वाला झुमका। जी बताइएगा, आज आपने कॉल किया है?
1: पीतल नगरी।
0: या आई एम फ्रॉम ब्रास नगरी। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया है राइट?
1: आपकी आवाज
0: वो तो आप सुन ही रहे हैं ऑलरेडी।
1: जो सपाट, मैं अभी आज की रात सुनना पसंद करूंगा।
0: ओके, एंड डेफिनेटली ये ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आप इंजॉय कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक। लेकिन मैंने गाना और चूज किया है एंड ये ट्रैक मैं सुनाती हूँ, आई होप उनको पसंद आएगा। उसके बाद हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा एवरीवन, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। बस हाँ, दिल से कोशिश करनी है आपको। जब हम कोई भी काम शिद्दत के साथ करते हैं ना, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और ये गाने एंजॉय कीजिए। फ्रॉम द मूवी मैं तेरा हीरो।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है। और देखिए दोस्तों, संडे है तो पार्टी कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। खूब एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन हाँ, कल मंडे भी है, कल फिर से ऑफिस की भागदौड़ और नई एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करना। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा लेट नाइट मत मैं कहूंगी कि मत सोइएगा, टाइम पर सोइए ताकि सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ उठें और मंडे को भी फुल ऑन पॉजिटिव वाइब के साथ वेलकम करें। वो तभी एनर्जेटिक बन पाएंगे ना जब संडे की नाइट में आप टाइम पर रेस्ट करेंगे। और अभी हमारे साथ ही कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार साहब।
0: आपको भी नमस्कार। राधे राधे, कैसे हैं आप सब?
1: आप बहुत बढ़िया साहब, आप तो आप कैसी हैं?
0: जी बहुत ही अच्छे हैं हम। अपना नाम बताइएगा।
1: मेरे यादव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: अच्छा, आपको भी नमस्कार सर। बताइएगा अपना शुभ नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं 9 पार्क प्रकाश है, गली नंबर 2 से शंकरलाल यादव बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए सर, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं साहब प्रेम रूप का गाना सुनना चाहता हूँ, रात क्यों होती है, दिन नहीं निकलता है, मोहब्बत है क्या चीज़।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं, ठीक है सर, हम सुनवा देते हैं। आपने हमें कॉल किया, आपका दिल से धन्यवाद। और आप इंजॉय कीजिएगा ये प्यारा सा ट्रैक अपनी फैमिली के साथ। एंड एवरीवन, चलिए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल कीजिए, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9833789689।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एंजॉय किया ये ब्यूटीफुल ट्रैक लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज, साथ में सुरेश वाडकर जी दे रहे थे साथ, फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से ये गीत आपने सुना। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैम मैं ध्रुव कुमार बोल रहा हूँ लाइन पार से।
0: ध्रुव कुमार जी बात कर रहे हैं लाइन पार से, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आज आपको कॉल करके बताइएगा हमें सर।
1: बहुत अच्छा लग रहा मैम, बहुत देर से आपका नंबर हम ट्राई कर रहे थे लेकिन लास्ट का आपका नंबर लगा, 9 बजे से ट्राई कर रहे थे हम आपका नंबर।
0: हाँ जी, फाइनली अब जाकर आपका कॉल लगा है, इतनी मेहनत करने के बाद आपको ये सफलता मिली है, बताइए इस खुशी को कैसे जाहिर करेंगे आप।
1: बस मैम हम खुशी मैम के साथ ही जाहिर करना चाहेंगे, हमारे फैमिली के साथ, अब जितने हमारे श्रोतागण हैं,
0: हाँ
1: जो भी एफएम सुन रहे हैं
0: जी,
1: उनके सबके साथ।
0: ओके, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप सर।
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल।
0: अरे वाह, ये गाना पक्का मैम के लिए ही है राइट
1: जी।
0: मैडम जी सुन भी रही है आपको और मुस्कुरा भी रही है।
1: हाँ मैम, आज संडे का दिन है, जॉब की भी हमारी छुट्टी है
0: जी,
1: तो अपना पूरे दिन घर पर है और इस समय खाना खा के अपने छत पे टहल रहे थे, सोचा नंबर ही मिला ले, देखे आज किस्मत से नंबर ही लग गया।
0: आपने मेहनत की है तो आपका कॉल डेफिनेटली सर शामिल हुआ है। देखिए, और आप मुझे बताइएगा आज संडे का दिन कैसा रहा आपका।
1: मैम संडे का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, ज्यादातर तो हम ये करते हैं, इस समय गर्मी है काफी, कभी गर्मी या कभी बादल ऐसे, मतलब धूप जी, तो हम तो संडे वाले दिन हमें मिलता है तो अपने घर का थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो करके बाकी पूरे दिन आराम से दोपहर में आराम कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कंटिन्यू फिर एक हफ्ता लगातार मंडे टू सैटरडे हमें कंटिन्यू जॉब पे जाना होता है, रात में देर से आना होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा सर, जैसे संडे आपको छुट्टी मिलती है, आपने कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो संडे का दिन पता चलता है कि कैसे सुबह से शाम हो गई।
1: नहीं पता नहीं चलता है। उसमें घर की कुछ जरूरत वाली चीज जैसे लेके आना, फिर घर पे कोई अचानक, जैसे हम संडे में आने पता रहता है कि हाँ संडे में छुट्टी तो मिलने वाले भी अपना संडे का ही टाइम देख के अपना मिलना हो जाता है, या किसी के यहाँ जाना होता है अपने यार दोस्त से मिलने
0: जी, संडे के टाइम आप बना लेते हैं कि संडे हम फ्री हैं तो संडे के दिन मिल लेते हैं, या फिर किसी को इनवाइट आपको अपने घर पर करना होता है, संडे के दिन सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ये जो संडे होता है ना सर, कैसे गुजर जाता है?

0: लगता है, पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सुबह हुई थी, इतनी जल्दी शाम भी हो गई।
1: जी
0: ऐसा ही होता है। एंड चलिए ये गाना आपको सुना देते हैं, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: ऐसे ही मुस्कुराते रहिए एंड रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये गाना एंजॉय कीजिएगा।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार आपको भी। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौटकर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे ना तो आपका भी कॉल डेफिनेटली लगेगा। खुशी आपसे कह रही है अब आप कॉल तो लगाओ। हाँ बस मुस्कुराए जा रहे हो आप होले होले, देखिए मुस्कुराना अच्छी बात है, मुस्कुराइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुस्कुराने के साथ साथ ना कॉल भी लगाते रहिए और ये गाने एंजॉय कीजिएगा।
2: बाकी सब कंगाल है।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है गीत आपके नाम से और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना पंकज उदास जी की आवाज में। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: नाम गुंजन है।
0: गुंजन, बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हो? बताइएगा गुंजन, आप कैसे हो और फैमिली में सब कैसे हैं आपके? पेरेंट्स बताइए, मम्मा पापा कैसे हैं आपके? आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। डिनर किया आपने?
1: यस।
0: आज क्या खाया है डिनर में, बताइए क्या किया है आज? क्या आपने खाना खाया है बताओ?
1: करने
0: क्या बोला आपने?
1: हम गणेश का विसर्जन करने गए थे।
0: अच्छा, ओके, बताइएगा आज आप क्या सुनोगी गुंजन? चलो ये प्यारा से गाना एंजॉय करो आप। अच्छा, आपको कोई बात पूछनी है हमसे? ओके, गुंजन का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं, गुंजन हमें कॉल करती ही है। अभी फिलहाल ही गाना सुनो फ्रॉम द मूवी धड़कन से और अक्षय कुमार जी साथ में शिल्पा शेट्टी जी, सुनील शेट्टी जी ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है ना यार, अमेजिंग फिल्म है। और

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक, नुसरत फतेह अली खान जी की आवाज में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूल्हे का सहरा सिर्फ एक गाना नहीं है, इसके पीछे एक बेहद भावुक किस्सा भी है। कहा जाता है कि जब नुसरत फतेह अली खान साहब इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे ना, मैं तेरी बाहों की झूले में पली बाबुल, ये लाइन पर उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की याद आ जाती थी। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ में इस गाने का दर्द आज भी इतना ही सच्चा महसूस होता है, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ गाए नहीं जाते, दिल से जिए जाते हैं। और जब भी ये ट्रैक हम भी सुनते हैं पूरी शिद्दत पूरे मन से, तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि बेटे का और पापा का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता, सब अपने ही जगह ठीक है, लेकिन पापा और डॉटर का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे अलग होता है, सबसे खूबसूरत होता है। और दोस्तों, अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन याद रखिए, रेडियो से हमारी मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपकी मुस्कुराहट हमारी आवाज की खूबसूरती है, तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने इसी रेडियो परिवार के साथ जुड़े रहिए। मैं फिर मिलूंगी नई बातों के साथ, नई मुस्कान के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, राधे राधे। मैं मुलाकात करूंगी आपसे सेम टाइम सेम जगह, आई मीन टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, सुबह टुमारो मॉर्निंग मैं मुलाकात करने वाली हूँ 10 से 12 आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक DM कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

ಇನ್ನಾಯ ಇದು ಯ ಕಚತುರ ನಾರ

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
2: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

समझे, अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाएं साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।